एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की

0: यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

शांत और निर्मल हृदय परमार्थ के लिए आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के द्वेष से भरे हृदय में परमात्मा के आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हमारा शरीर एक मंदिर के समान है, इस मंदिर को प्रभु के रहने योग्य बनाना चाहिए। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जिस परमेश्वर द्वारा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।

मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्रीहरि का ही आश्रय ले, उन्हीं का श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। यही मनुष्य जन्म का फल है, इसी में मानव का कल्याण है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह की 6:40 होने को है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 86।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्रीराम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्रीराम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगीं कि राजकुमार क्षणभर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिली किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:10 पर सुप्रभात कार्यक्रम में आज विशेष के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह विषयों पर बात होगी। 7:40 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ प्याग। 8:30 पर सुनिएगा पहाड़ी नाटक नोखे लोग नोखियां गल्ला। गीतांजलि कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 9:00। सुबह 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत। 10:30 पर हिमाचली गीत और लोकगीत सुनवाए जाएंगे। 11:30 पर पेश किया जाएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:00 सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। घर परिवार कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 12:30। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिली किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा फिल्मों से भजन। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवा मंच। शाम 5:30 पर विषय रहेगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में करियर। सदाबहार संगीत ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 6:06 पर। शाम 6:30 पर मौजां ग्राइंदियां कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:10 पर किसान वाणी कार्यक्रम में आज नर्सरी प्रबंधन परीक्षण के उपरांत विषय पर बात होगी। सबरस कार्यक्रम आप सुना करते हैं 8:00। रात 9:16 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले के गाए कुछ फिल्मों से चुनिंदा गीत। ताम गीतांदि कार्यक्रम का लुत्फ लीजिएगा। रात 9:30 पर रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:20 11:00, 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिली किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00। समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 1:00, शाम 5:00, 7:00 और रात 11:00 हिंदी में समाचार। 1:05, शाम 5:05, 7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में

तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिलीज किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिलीज किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयास हि भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पंच देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्री मोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। 17,2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिकवार्तां करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविधक्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत विश्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असम राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असम राज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 30 पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

0: दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और मई की हल्की फुल्की ठंड का आनंद ले रहे होंगे। जी दोस्तों, बात करते हैं कुछ खास। मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। मीठी वाणी और विनम्र स्वभाव, इसी से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। मधुर वचन रिश्तों को मजबूत करने, तनाव को कम करने और सफलता प्राप्त करने की कुंजी हैं। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी वह लोगों को प्रिय नहीं है। जबकि कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी वह लोगों को अति प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी वाणी का है, जिससे पराए भी अपने हो जाते हैं।
1: सुनो एक तराना, नया एक फसाना के आंगन में।
0: तो दोस्तों, आज के सुप्रभात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

इस प्यारे से गीत के बाद सुप्रभात कार्यक्रम में बात करते हैं उन घटनाओं की जिनके कारण आज का ये दिन खास बन गया। 1999 की बात करते हैं। आज के दिन रूस के उप प्रधानमंत्री सर्गेई स्टेपनिश कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। 1999 में ही अमेरिकी वित्त मंत्री रॉबर्ट रूबिन ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। 2002 की अगर हम बात करें तो आज के दिन मिस्र, सीरिया और सऊदी अरब ने पश्चिम एशिया मामले में शांति समझौते की इच्छा जताई। और 2008 में आज के दिन चीन में आए भूकंप के कारण जान माल की भारी क्षति हुई। किन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1820 में आज के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। एक नर्स थी जो आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता थी। इनके विषय में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे, पहले आपको बता देते हैं 1875 में आज के दिन प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन किया था, कृष्ण चंद्र भट्टाचार्य, इनका जन्म 1875 में आज के दिन हुआ था। 1917 में बड़ौदा की महारानी सीता देवी का जन्म हुआ आज के दिन। और आज ही के दिन 1933 में नंदू नाटेकर का जन्म हुआ। पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया था। 1989 की अगर हम बात करें तो आज के दिन भारतीय महिला क्रिकेटर शिखा पांडे का जन्म हुआ। और आज ही के दिन वर्ष 2002 में भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी का जन्म हुआ। किन महान हस्तियों के निधन आज के दिन हुए ये भी आपको बता देते हैं। 1984 में आज के दिन भारत की कथक नृत्यांगना अलकनंदा का निधन हुआ। 1984 में ही आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले साहित्यकार धनंजय कीर का निधन हुआ। 1993 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ। और 2015 में आज ही के दिन बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार सुचित्रा भट्टाचार्य का निधन हुआ। दोस्तों सुप्रभात कार्यक्रम में एक बार फिर रुख करते हैं मनोरंजन की और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

सुप्रभात, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। बात करते हैं आज की, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। आज के दिन जन्म हुआ था नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। आज के दिन को मनाए जाने की शुरुआत 1965 से हुई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा नर्सेज के लिए नए विषय की शैक्षिक और सार्वजनिक सूचना की जानकारी की सामग्री का निर्माण और वितरण करके इस दिन को याद करना है। मरीजों के प्रति नर्सेज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। नर्सेज की सराहनीय सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

सुप्रभात, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, आजकल हम मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष मई महीने में मनाया जाता है। इस वर्ष ये सप्ताह 8 मई से 14 मई तक मनाया जा रहा है। हमारे देश में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की मुहिम जनवरी माह में चलाई जाती है। इस मुहिम को चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु दर और घायलों की संख्या को 2030 तक आधा करना है। हम जानते हैं कि हमारे श्रोता बहुत जागरूक हैं और सड़क पर चलते हुए यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन भी करते हैं। हम सभी जानते हैं कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करना हमारी सेहत, हमारे शरीर के साथ साथ हमारी जेब पर भी भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए उच्च स्तरीय वैश्विक बैठक 20 और 21 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क में आयोजित की जाएगी। सड़क पर सुरक्षित चलिए, दुर्घटनाओं से खुद को और दूसरों को बचाइए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

भी नहीं कर सकते। ये दिन विशेष रूप से पौधों के स्वास्थ्य के महत्व के विषय में जागरूकता फैलाने और जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए समर्पित है, क्योंकि पौधे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण संरक्षण भी इस दिन को मनाने के उद्देश्य हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई 2022 को मनाया गया था, तभी से ये दिन प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। याद रहे, ये दिन मनुष्यों, अन्य प्राणियों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को साथ जोड़ने का कार्य करता है। ये दिन हमें स्मरण कराता है कि स्वस्थ पौधे ही स्वस्थ जीवन का आधार हैं।

0: लक्ष्मी देवी और राजेश कुमार का गाया लोकगीत अभी आपने सुना।
1: मई धमाका आ गया है, आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
2: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
0: कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मानसिंह और सुनील राणा का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात, और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिलीज किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेउक शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
4: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
8: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
9: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
10: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
11: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
12: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
13: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद

0: शांति ये ए थकी यही मैं इस चोड़े चुक्की करिए जर की गां दे ये रखे हैं सिए पे ही न जाम ये तेरे कुर्सी ते थल्ला न पे या रख जर के खसकेरी दे लाई दे हाथ में ये
1: ओहो ले ले ले रखी दे सियो कुछ नहीं खान दे सियो सेरू बननी भाया मैं नी होंदा से थकी यही तो ले आई मैं मिन्ने दा राशन चोड़ा भरी के दिखता कने कल्ली चुक्की ले आई है
0: ना रोज कुण चली रहा था दुकाना महीने का कट्ठा लियो ना तो खरा रहा मिये बरगत रही रासने च रोज चली रहा चोलुआ चुक्की करिए
1: खरे टाइम में आई तू चाह भी बनाई रखियो मैं ए ले कने लेंदा ते कुछ बिस्कुट दे पैकेट पुकड़ ता काट मिये खाई लेनी है ना
0: जड़ी ये कंडू सुका था मेरा कने चाह ही ले आई है पानी दे घुट पिया पहले लिया दो के कुट लिया पानी ये दे जड़ी ये चाय ची मरी रहनी है एक है चंपा हुई ये कन एक है शांति हुई ये नी भी कुसी दी जान होवे तमी ना चा कड़पाई के रखनी लिया पानी लिया जरा के ठंडा ठंडा
1: तमे चाय ले आंदी ना तू पानी पी ले यहां इस कप पे चुक्की
0: ओ जड़ी ये रहना दे इस ये थू लिया पानी ले आड़िए हां
1: राशन ते अपने घरे लंदा एहसान तू मुंजो दसा दी ए ले पानी पी ले
0: हाँ आजकल तो पानी पीना भी महंगा हो भाई लोको पानी ये पीने दा भी सान जता दे दे ओ मिये हाँ हाँ ले ले रखी इस ग्लासे कने दे चाय दे कड बिस्कुट आई पैकेट कड कने ए ले ले ले ए दो के तू कड़ी ले ना कन बाकी फिंडवे दे दे अमी ये खाली हत्था होना न्याणे दे घर जड़ी ये बुरा लगदा दे दे फिंडवे भी
1: ले ले ले एक फाड़ी इंदी है मैं आहा खाई लेनी है ना ले परड़िए केसरो दिखता लंदे कुथु ते आए बिस्कुट गेयो मकोड़ुए दुकान नयो
0: खड्डा है जाना और मकोड़ुए दुकान ले आने और को ए चली गया मैं दे दे ये हालता च ग्राए हाड़े दा सही ये फेमस मिए
1: अड़ीके की बिल ले दे बिस्कुट लगा दे मंजो खा तू चख ता सही
0: जी बापड़िया कसूर होवे ना त ए इदी और दे दी चीजें नहीं लाने दाग दे पैकेट करो आई सी आड़की शांति ये आ जड़ी ये बेसुआद दे तन दिख भला लगा दा कि बरखा पई होए ना च लगा दे ने बिल ले दे
1: ओ चुड़ती भी है मकोड़ुए दी दुकान पता नहीं फिरी मुंजो नहीं तिस दा विश्वास होंदा दिखता इस तरीक लिखी होनी है पढ़ता कुछ दी लिखियो पढ़ पढ़ ए पक्का एक्सपायर ना होए ए ए दिख मिए ए ता पिछले साले दा मुकी है बिस्कुट कने मकोड़ो अल्ली भी बेची याद आ कोई पता नहीं इस दे समाने दा मैं तक लांदी तू चोलवे खुल्ली के दिख लंदा क्या क्या ते
0: ये की दिया गप्पा मारा दी ला ला मिंजो दे तू मैं पूपड़ दी मिंजो भी अप पूपड़ है चैन नहीं ओंदी ओ मेरी ये जानी है मकोड़ुए दा मुंड फूकिया
1: तू और समाना भी दिख दिखता ए दिख ए खलार दी मैं सब कुछ
0: खोल खोल ओ मिंजो
1: इन साबना दिख
0: ओ
1: मिये की है मरना इन्नी तो सामने लगना ही नहीं ये तो 2 साल पहले मुकी या चरड़ो यानी और तजो
0: ए ए बिस्कुट आए पैकेट फिर ये दिख पाला ब्रेड ब्रूडो इन्नी मिंजे लगा था सारा खराब दे ही पेनी
1: मैं मिगी यही

0: कोड़ू छड़ना नहीं है से तिस पर हां विश्वास कर दे कने से विश्वासघात करदा हाने दिखता
1: ओ मिये तिन्नी खरियां पोलियां जाजियां जे तेरी रेड खूड है चंपा है शांति कने केसरोए बनींदा चोळ मच चुकी ससमाने बन तू चल कने इलाज कर दियां चल
0: दिखता मिये की बोला दी ही चंपा मैं भी जाना सौदा लेना सह भी कुछ की गई होंगी तो तीसा भी मेली देना है मैं तो पहले गलांदी है मेरी बिजनेस ते जलदा है ताई तो खोली बैठी है तू दुकान नहीं तो मैं नहीं दुकान ने खोली लेंदी अपनी कराला गा
1: बस तीजो भी सही काम मैं रही है तीस भी करी पाऊने कन्हाड़ी तू छुट्टी करी दे फिरी आहा ना कुछ ही कमान आहा ना जीन आहा ना दो तिहाड़े और कुछ करी जान
0: ओ तू मिंजो ने मत लड़े तीस मुकोड़ुए तक कान मरोड़ना मैं ना तीसी मुकोड़ी दी टाक का याद लाई है तो मेरा नाम भी शांति नहीं है हाँ चल तू चुप छोड़
1: चढ़ी एडा भारी मसा गाणी पजाया उन पीरी लीना पौना।

0: वो आज तो जाना ही पौना है मकोड़ू दुकान ही जाना पौना है। सारा सौदा खत्म है घरे ता तू ते मंगी मुंगी के ले आ ना थोड़ा जिया थोड़ा शांति ते ले आ थोड़ा केसर ते सारा समान खत्म हो गया। इंजा तो मैं मकोड़ू दुकान दिखना नहीं चाहती पर क्या करना आज मजबूरी है लेना पौना है सौदा थोड़ा जिया। चलती मैं बैठे ही है बार मकोड़ू मकोड़ू पाई ओ जी मकोड़ू पाई ए काली काली गोभी हो रही हो ये थोड़ी थोड़ी खराब लगी होना ये किया लगाई हो तू हाँ मकोड़ू पाई सुमे की नहीं ए गोभी ए ए और सी दुकान ते तई छैल चिटी चिटी गोभी होंगी जड़गी जा ही नहीं होना अज मौसम इतना खराब है इतनी तई लैना पौनी है गोभी। मकोड़ू पाई सुनता ही नहीं है सुनता ही नहीं सच्ची शांति सच्ची गलांदी ए दिख केडी अकड़ा ने हिला दा जरा जरा हिलया जरा करे शांति दी ता ही नहीं बनदी इसने गलांदा नहीं है ढंगे ने जरा भी करना क्या। मकोड़ू पाई ए काली काली गोभी जड़ी होई रही हो ए किया लगाई है तू हाँ सुम्या भी आया जो कि नहीं। मकोड़ू पाई हाँ क्या बोलिया अच्छा 50 रुपये किलो ओ पाई क्या बोला दे तू हाँ और सीधे दुकान ना था 40 रुपये किलो है भी चिटी चिटी गोभी क्या है तू हाँ 50 रुपये किलो लाई हो। मकोड़ू पाई ए आलू ए जड़े दो दो आखी निकली आई यही नहीं हो ए आलू किया लगाया तू हाँ इं तो मैं लैने नहीं है ना शांति के केसरों दे आदि मिंजो ना आलू पर क्या करना पर होने लगे घर आना ना ए आलू मटर गोभी बनानी ही मैं ता करके आई ही लैना और सैरी आले आलू भी मुकी रहे हो ना तू हाँ एक दाड़कने रखे आलू है। मकोड़ू पाई दो दो आखी निकली है इस आलू दिखा भला ये नक भी लगे निकलना दस ना ये किया किलो न। मकोड़ू पाई ये क्या तू सारे ने समझाई आदे ये तो मैं समझी आंदी ना बाकी दे लोग किया समझते होंगे क्या गलाया ये भी 50 रुपये किलो
1: केसरो ओ दिख मिये चंपा तो जाई बड़ी है दुकाना
0: तू है
1: ओ तो है खड़ोती हो इन्ना सारा समान ले लेना इसे भी पछताना पौना है जानदिया मिये इसे रोक दिया कि मत ले समान ने
0: रोक दिया इसे तू खरीदना रह इसे कितना के खरीद दी है खुरकत हट है जरा के रही सदी भी बड़ी मोल ना जानदी ना जरा के मकोड़ी दुकाना का स्वाद लेना दे सही खर्चना दे सही दो पैसे तू
1: ओ मिये पता नहीं क्या क्या खरीदी लेना इन्ना वैसे दो चार चीजें तो ज्यादा तेरे ना खरीदनिया नहीं मंग मंग ही होंगी सही पर दिख मिये इस मकोड़ुए की शकल किया चौड़ा होने बैठा ए सोचता ग्राए दे लोकां ते पता ही नहीं है लगता
0: फुल कॉन्फिडेंस शकला दिख तू इस दिया मिये साढ़े समाने भी बड़े भरी कॉन्फिडेंस ने बेचता है पर ये तो गलती साड़ी है ना पढ़े लिखे हाँ फिर इसलिए दौड़ दे
1: पर ग्राए च इक्की दुकान हो करना क्या इसका मतलब कि समान अज दिखी के लेना चाहिए कने अगर लड़ी पौगा ना अज बर्तन कट करेंगा ना तो करना दे
0: मैं तो गलांदी मिये शांति फिंडुए दे पापे ते दुकान खलाई ले तू छुट्टी करा इस दी
1: आइडिया तो तेरा ठीक है ना।

ये मैं पहले भी सोचा हा फेंडुए पापे करी हड़ी दुकान तिथु भी मंजा ही बहना पोना फेंडुए दे पापा जाना कने तेरा दा ऑफिस जाना ऐ नहीं बेच सकती दुकान ना नी बन की गप ता मैं कने तू ही खोली लेंगी हां पर चंपा उना दे जरा

0: दिख आई तो है बोल दी है सही हो लंदा क्या क्या इन्ना सब चीजें एक्सपायर ना उन कुछ की पाई सही अक ले लाना नहीं तन्ना भी 500 रुपए यह समान
1: ओहो शांति कनी केसरो तू हाँ भी आई है सामान ने लेना है इस दी दुकान ना यो आईया तू हाँ भी ले आ ले आ ले आ
0: आहा लेना नहीं आई है चंपा आहा टाण आई है जर के रोया तू इस है बिछाड़े किनारे त्रीड़े मिये केसरो आहा मैं ये खरीदना नहीं आई है ए ए टाण आई है इस सौदे आहा खरीदना मुंडी सदा खरीदना सा
1: टाण आई है तू हाँ

0: सौदे मैं तमीये ऊन खरीदया है। देख गोभी आलू धूपे की बत्ती भी ली, मैं एक धूप जोत भी करनी होंगी ना संजा प्यागा तो धूपे की बत्ती भी ली। कहने तू क्या बोला टाणा आई हो।
1: चुप कर मिये चुप कर मी, केसो जरा के तीड़े ही सही बछाड़े पास है, इन्ना सारा ला पाई देना ताए आ जरा निश्चय ने सुन।
0: तायो तायो कही आऊ मैं।
1: चुप कर गी मकोड़ू, तो पता नहीं सुमना नहीं सुमना टोने बाबे अल जाए के तेरी बाज पूजी आनी है।
0: ओया क्या ओया क्या मिंजे दसा तो सही।
1: ओना क्या मकोड़ू ते समान लेंदिया मैं प्यागा, कने ए ओनी लेके आई थी, सारा समान एक्सपायर निकलिया, बिस्कुट से सड़े दे मुस्को दी मी बंद बंद ताजे राती मुकने आले न।
0: बंद कने मुकने आले न से किया।
1: डेट तिस्ती मुकी आनी आज, कितने के खाने सांजो बेई के भी खाना पौने जाए के, पर पहले इस कम्मे निपटा दियन केसरो दस अड़िए सही क्या क्या होया। मैं एक टुकड़ा बंदे दा खाई लेंदी है।
0: तू एक टुकड़ा कहीं खा दी मी सांजो बंडी दे बंडी के खान दिया न।
1: नी जीना हो तो हाँ चार ते आड़े मरना तो हाँ तोड़ी दे दे समाने खाई करिया मरिया था मिंजो मत दिनिया पर।
0: ना ना तिजो भी देना संजा वो ना है एक्सपायर बोल दी है शांति संजा। कन मिये मैं भी तो सौदा खरीदया ऊन ही तो खरीदया मिये मैं, तू हाँ फोन ही करी दी है मिंजो कि दे दे समान है दी दुकाना मैं नहीं जानती।
1: ओ मी पढ़ तू डेट पढ़ ले आ क्या तै।
0: ए दिख मिये ए ले आ
1: धूपे दी बत्ती दस ला।
0: हां
1: ए तो चल खरी भी है और के लिया ए तेले दा बोतलू।
0: आहो ए भी ले आ मिये दिख ए भी ले आ।
1: ठहर यें ए इसती डेट तो चार साल पहले मुकी हो, इस तक के तुड़का लाना तै। छी छी छी मी केसर देखी से मुकोड़ हुए मेरा तो मन करा मैं गोली मारी हूं ऐसी हो।
0: ओहो मिये दे छोटी छोटी लिखी हो दिखता एक्सपायरी डेटा दा, इतना का तो पढ़ोंदा भी नहीं मिये क्या करना है। क्या बोल दे मिये तीस जो लेंस मैग्नीफाइंग लेंस मिये तीस ने पढ़ना पौनी एक्सपायरी डेट तो सुज्जा दी नहीं है किन्या दिखनी है। शांति ये दिख कपड़े तोड़ने वाला पाउडर ले आ मैं ये
1: पाउडर ना। हाँ ए पाउडर केसरो भी लंद एक्सपायर है भी।
0: ये भी एक्सपायर है ता क्यों ही है मिये कपड़े तो ही लेंगे कपड़े तो त्यों ही आने ना चाक बनगा कि नहीं बनगा।
1: मिये एक्सपायर मतलब एक्सपायर खत्म है इस तक ता चाक निकलना मर है मतलब है इस ते चिक की निकलनी
0: है चिक की निकल गई कपड़े साफ ही नहीं होंगे। हाय मेहनत बर्बाद जानी मतलब। चल ये समान सारा ये मकोड़ू दे मुंडे मार के आनियां ने मेरा तो पहले गौ नहीं करा रहा कि जाई नहीं इसकी दुकान ते कुछ ल्याऊं मैं मिये तो मजबूरी थी मजबूरी मेरी मिये नहीं तो मैं तो जी स्टोर जान दी। हाँ
1: हाँ तो बड़े बड़े जी स्टोर ते उतरी के तू अज ता है कहे बड़ी वही अगे इसकी दुकान चुड़ दी पता नहीं अंदर अंदर कितना समान खराब होना है मेरी भी मत मारी वही जड़ी प्याग है चलिए इसी हल बंदा लेना।
0: ठीक बोला दी मिये मैं भी कदी नहीं जाती मैं पैर नहीं रखना इदी दुकान अज्जे ते बाद मैं ते सोची ले मैं कसम खाई लेंदी ने आज।
1: समान ना लेने ते इस दा क्या होना इस दा ते बाद दे होना घाटा क्या होना इसी सबक सिखाना पौना है। चल तू चल।
0: केसरो तू कहीं चुप बैठी हो तै नहीं टाणा इदा समान तिजो के खरा समान दिते ही नहीं।
2: मैं कह नहीं टाणा और के मैं घरे लेकर ये जाना है किदियां गल्लां कर दी तू चंपा मिये मिंजो ता लगा दा मेरे पैसे ना खू खाते च चली ये मुंड फूके इस मकोड़ुए दा पर मैं ता गलांदी चंपा ओ है ताहा ने खरा अहां भी बड़ियां चेंट बन दियां अहां सोच दियां पूरे ग्राएं च अहां तीन नियां ने पढ़ियां लिखियां कने दिखी ले मकोड़ु मैं देता ना हंजो धोखा।
0: हां बन दी ता तू भी बड़ी चंट है तू ता मैं ते पहले धोखा खाई बैठी मैं तो मिये सारे ते लास्ट बिच गई मैं तो वैसे जानती नहीं दी दुकाना मैं तो इस शक्ल नहीं दिख दी इस दी दुकाना दी पर क्या करिए ग्राएं दी गल है ना जाना पौंदा। केसरो क्या करिए इस समाने दा बरती लिए
2: तेरा दिमाग है खराब होया जे तू बरतना पाई तो तू बरती ले कने मिंजो दिखिया गलांदी मेरे घर अगे आने सियाने दे दिया सड़िया समान तिने खुमाना मिये और के ही पुट्ठा कम तिने करी कवाना कने मिये जे दे दे एक्सपायरी समान ना खुआंगे तो आहां भी मिये हॉस्पिटल दे चक्कर लांदे रहेंगे तिजो पता है ए एक्सपायरी समान खाई करिया फूड पॉइजनिंग होई जांदी हुण तिजो सभी समझाना पौना ना कि ए बड़ा क्या है।
0: अड़िए मैं ते समान ले आई नहीं है, मैं ते मिये कपड़े धोने वाला पाउडर ही ले आ। और नी उगल गए कपड़े ते ना सही क्या करना, अगे ते नी जांगे दी दुकाना, और क्या करी सकदे।
2: तू ते पाउडर ही ले आऊंगा मिये, पर अहां ते बड़ा कुछ ले रखे ना, एड्डा चोला भरी रखिया है। पर जल भी दुकाना जाना ना चंपा, गौर न सुनी ले, कोई भी चीज अहां खरीदा दे तो अहां मुल्ला जी बनाना बैठी रहनी है कि 50 कटा 100 कटा, तो एक नजर अहां जो जड़ी एक्सपायरी डेट होंदी ना तिसा पर भी मारना चाहिदी, ता तो समझिए कि जनासा समझदार न।
0: जनासा होनी है तो समझदार ही ने मिए, पर क्या करना, ये जे एक्सपायरी डेट लिखी होंदी ना मिए, कितनी छोटी छोटी होंदी लिखी हो, जल्दी टोलना ही पौंदी।
2: ये तुम ही बचियो है एक्सपायरी ब्रेड खाने ते, मर्दी मर्दी है बचियो, तू भूलिए एडा वड्डा सबक हा तिजो मिलिया। समान ता हम कोड़ुए टाई के रखना है, कने तिस्ते हां पूरा मुआवजा लेना है।
0: हां चल शांति भी तेई गला दी, चल चल चल शांति चल।

अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी नाटक नोखे लोग नोखियां गल्ला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत।

भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम? इस दिल से क्या नाराज हो तुम?

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: दिल पर तेरी याद का पहरा ना होता, ना होता, ना होता ये प्यार इतना गहरा ना होता। आनंद मिलिंद की बनाई तर्ज पर यादों के मौसम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थीं अनुराधा पौडवाल और सुरेश ओबेरॉय की।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
7: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
6: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
7: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
6: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
8: Nexa.
9: खो गया इंतजाम।
10: किसका? गुड्डी की फीस का।
9: दिखा।
10: 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
11: आरबीआई कहता है
12: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
13: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
6: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
13: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
6: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
13: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
8: Nexa.
14: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
15: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
16: दिमाग चार्ज कर अपना।
17: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
16: देखा
15: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
17: अब क्या करोगे?
15: फ्री वाईफाई है ना।
16: बुद्धू सुधर जा।
17: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
15: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
17: आरबीआई कहता है
12: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
18: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for Rs. 10.99 lakh with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
4: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
19: बेटा,
16: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
19: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
15: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
19: चलो,
4: कहाँ
19: एडमिशन कराने?
15: खाता हुआ एक्टिव।
12: आरबीआई कहता है
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम अभी जारी है। कार्यक्रम के बाकी नगमे आप सुनेंगे 9:30 पर। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी, 80,153 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। चिट्टे के खिलाफ राज्य सरकार ने अपनाया सख्त रुख, चिट्टा मुक्त अभियान के दूसरे चरण के साथ ही नशे के खिलाफ लिए कई अहम निर्णय। प्रदेश में 4 नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार तेज, भाजपा और कांग्रेस नगर निगमों के लिए अलग अलग जारी करेगी घोषणा पत्र। मंडी जिला में विभिन्न क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी। और लाहौल स्पीति में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी, मौसम विभाग ने 10 जिलों में वर्षा व तूफान की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कल 37,591 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इन चुनावों के लिए कुल 80,153 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 14,590 नामांकन दर्ज किए गए हैं, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 493 नामांकन प्राप्त हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान करवाए जाने हैं। नगर पंचायत नारकंडा के सभी पदों पर एक एक ही नामांकन दर्ज किए गए हैं, जिससे नारकंडा प्रदेश का पहला निर्विरोध निर्वाचित शहरी निकाय बन सकता है। हिमाचल में चिट्टे के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और पहली जून से चिट्टा मुक्त अभियान के दूसरे चरण को आरंभ करने की घोषणा की है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि देश भर में PITNDPS एक्ट के तहत कार्रवाई में हिमाचल पहले नंबर पर आया है। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत देश भर में दर्ज मामलों में 33% से अधिक कार्रवाई के मामले हिमाचल के हैं। नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 234 पंचायतों को नशे की संलिप्तता के आधार पर चिन्हित किया गया है, जहां विशेष नशा जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि चिट्टे में संलिप्त 123 कर्मचारियों में से 31 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 90 और सरकारी कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मंडी में विकास कार्यों को गति देने के बजाय पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आवंटित 15 करोड़ रुपये को सरकार ने वापिस लेकर दूसरी जगहों पर खर्च किया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है।
1: मंडी में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी नगर निगम बनाने में सफल हुई है और अब की बार भी सफल होगी बहुत बड़े बहुमत के साथ। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से मंडी को, पूरे हिमाचल प्रदेश को नजरअंदाज किया, विकास कार्य के दृष्टि से मंडी को एक बार नहीं अनेकों बार जलालत की है, तो लोग जो है बहुत गुस्से में है वर्तमान कांग्रेस सरकार के, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीते।
0: पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला जिला से कांग्रेस समर्थित पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है, जिस वजह से इन चुनावों में कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि भाजपा व इनके नेताओं ने विकास को नजरअंदाज किया है और विकास कार्यों में अड़चनें खड़ी की है।
2: इलेक्शंस हमेशा जो है कभी पार्टी सिंबल पे नहीं हुए हैं, हमेशा जो है इंडिपेंडेंट हुए हैं, परंतु इस बार भाजपा ने एज अ स्ट्रैटेजिक मूव बोल सकते हैं, उन्होंने पूरे स्टेट में जो है अपने उम्मीदवार घोषित करे हैं। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार जो है हर क्षेत्र में जो लोकल एमएलए हैं उनके लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे अपने अपने कैंडिडेट जो है उतारे हैं। पिछले 5 साल की भी अगर मैं बात करूंगा भाजपा की सरकार की, वो अगर 2-3 गांव भी गिना दें बड़े क्षेत्र के, हमारे कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में हर जगह जो है हम लोग अच्छे बहुमत से जो है।

0: शिमला में बहुत अच्छी लीड से कांग्रेस के जिला परिषद भी बनाएंगे और बीडीसी चेयरमैन और सदस्य भी बनाएंगे।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में हो रहे 4 नगर निगमों के चुनाव को लेकर भाजपा आज अलग अलग संकल्प पत्र लाएगी। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि ये केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि सभी नगर निगमों के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट होगा। संकल्प पत्र आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान जारी किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी में, भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार पालमपुर में और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल धर्मशाला में संकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे। पार्टी ने दावा किया है कि नगर निगम चुनाव में जनता विकास, पारदर्शिता व जवाबदेही की राजनीति को चुनते हुए भाजपा को समर्थन देगी। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य व प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल 4 नगर निगम के चुनाव के प्रचार के लिए आज से प्रदेश के दौरे पर रहेगी। रजनी पाटिल आज सोलन में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेगी और रोड शो के माध्यम से मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करेगी। कल 13 मई को रजनी पाटिल मंडी, 14 मई को पालमपुर और 15 मई को धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए रोड शो और चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 6000 अफीम के पौधे और 500 ग्राम से अधिक चरस बरामद की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला में नशे के विरुद्ध चल रहे जीरो टॉलरेंस अभियान को लेकर पेश है एक रिपोर्ट।
2: मंडी जिला के औट, बल और सदर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती और चरस तस्करी मामलों का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान कुल 5971 अफीम के पौधों और 529 ग्राम चरस बरामद की गई, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना औट के तहत गाँव धलोट के दुर्गम क्षेत्र में करीब 10 बीसवा भूमि पर अवैध रूप से उगाई जा रही अफीम की खेती पकड़ी गई, जहां से 3220 पौधे बरामद किए गए। वहीं दूसरी कार्रवाई में इसी गांव में करीब 9 बीसवा भूमि में 2791 अफीम के पौधे बरामद हुए। पुलिस ने दोनों जगह पौधों को कब्जे में लेकर नियम अनुसार नष्ट कर दिया और NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि सभी मामलों में नियम अनुसार जांच जारी है और नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन के समीप कोलार गांव में अज्ञात हमलावरों द्वारा 2 लोगों पर हुए हमले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने के कारण ही लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। बिंदल ने कहा कि कालंब और पांवटा साहिब क्षेत्रों में टिप्परों की आवाजाही अनियंत्रित है, जिससे आए दिन टिप्पर चालकों और आम लोगों में ऐसी झड़प हो रही है। उन्होंने सरकार से 24 घंटे के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज दिन की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई है, जबकि लाहौल स्पीति में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और सोलन जिलों के लिए वर्षा व ओलावृष्टि के साथ तूफान आने का येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। मुख्यमंत्री के हवाले से अमर उजाला ने सुर्खी दी है, हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए अब एंटी चिट्टा टेस्ट होगा अनिवार्य। दैनिक जागरण का शीर्षक है, कॉलेजों में प्रवेश व सरकारी नौकरी से पहले अनिवार्य होगा डोप टेस्ट। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, चिट्टे को लेकर 234 पंचायतें रेड जोन में। 6 महीने बाद फिर शुरू हुई दिल्ली शिमला धर्मशाला सस्ती हवाई सेवा, शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, सप्ताह में 6 दिन चलेगी सेवाएं। दिव्य हिमाचल व हिमाचल दस्तक की एक खबर है, चंबा के ककीरा में गिरी गुजरात के पर्यटकों की गाड़ी, 6 की मौत, 4 घायल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी, 80,153 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। चिट्टे के खिलाफ राज्य सरकार ने अपनाया सख्त रुख, चिट्टा मुक्त अभियान के दूसरे चरण के साथ ही नशे के खिलाफ लिए कई अहम निर्णय। प्रदेश में चार नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार तेज। भाजपा और कांग्रेस नगर निगमों के लिए अलग अलग जारी करेगी घोषणा पत्र। मंडी जिला में विभिन्न क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी। और लाहौल स्पीति में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी। मौसम विभाग ने 10 जिलों में वर्षा व तूफान की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। प्रस्तुत है गीतांजलि कार्यक्रम के बाकी नगमे। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में लीजिए सुनिए प्यार किया है प्यार करेंगे फिल्म का ये गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है।

0: प्यार किया है प्यार करेंगे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की।
1: बोल बोल के थक गया,
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
6: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
7: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कोई जानकारी इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
3: दी, ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो ना।
7: आरबीआई कहता है,
8: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: लीजिए सुनिए गीतांजलि कार्यक्रम की अगली पेशकश। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें हैं। ये गीत हमने लिया है वो सात दिन फिल्म से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: समझ ले, मुँह से कहना मुश्किल है।
1: मैं बोली क्या जानू आँखों की ये बोली, हो बोली, हो बोली, हो।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में वो सात दिन फिल्म का गीत तभी आपने सुना।
1: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
0: गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर लीजिए सुनिए अनजान का लिखा गीत। ये गीत हमने लिया है दो दिलों की दास्तान फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।

और दोस्तों ये है आज के गीतांजलि कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। लता मंगेशकर की आवाज में ये है हिना फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतांजलि कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। समय हो रहा है 10:30।

श्रोताओं, आगे के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त प्रवेश। और अब आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज़ दी है सोना महापात्रा और अरमान मलिक ने।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं मोहम्मद फैज को फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म गदर 2 का ये गीत, जिसे सुरों में पिरोया है मिथुन नीतिमोहन और विशाल मिश्रा ने। संगीतकार हैं मिथुन और गीतकार हैं सैयद कादरी।

0: मई धमाका आ गया है। आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस मई ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम।

Line. सिमरन फिल्म से मोहित चौहान की मनमोहक आवाज में सुनिए ये गीत। म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और गीतकार प्रिया सिराइया।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब समय हो रहा है 10:30। आइए अब मिलकर सुनते हैं हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम।

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
4: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
5: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज किया हमने कर्नेल राणा की इस प्यारी सी भेंट के साथ। आइए अब मिलकर सुनते हैं निर्भय सिंह की आवाज में ये अगला लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीत।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
1: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं रामलाल तुली की आवाज़ में अगला लोकगीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 11 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कल 37,591 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इन चुनावों के लिए कुल 80,153 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 14,590 नामांकन दर्ज किए गए हैं, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 493 नामांकन प्राप्त हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान करवाए जाने हैं। नगर पंचायत नारकंडा के सभी पदों पर एक एक ही नामांकन दर्ज किए गए हैं, जिससे नारकंडा प्रदेश का पहला निर्विरोध निर्वाचित शहरी निकाय बन सकता है। हिमाचल में चिट्टे के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और पहली जून से चिट्टा मुक्त अभियान के दूसरे चरण को आरंभ करने की घोषणा की है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि देश भर में PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई में हिमाचल पहले नंबर पर आया है। उन्होंने बताया है कि इस एक्ट के तहत देश भर में दर्ज मामलों में 33% से अधिक कार्रवाई के मामले हिमाचल के हैं। नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चिट्टे में संलिप्त 123 कर्मचारियों में से 31 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 90 और सरकारी कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंडी में विकास कार्यों को गति देने के बजाय पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आवंटित 15 करोड़ रुपये को सरकार ने वापिस लेकर दूसरी जगहों पर खर्च किया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिरोध है।
1: मंडी में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी नगर निगम बनाने में सफल हुई है और अब की बार भी सफल होगी बहुत बड़े बहुमत के साथ। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से मंडी को पूरे हिमाचल प्रदेश को नजरअंदाज किया, विकास कार्य के दृष्टि से मंडी को एक बार नहीं अनेकों बार जलालत की है, तो लोग जो है बहुत गुस्से में है वर्तमान कांग्रेस सरकार के, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीते।
0: पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला जिला से कांग्रेस समर्थित पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है, जिस वजह से इन चुनावों में कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि भाजपा व इसके नेता विकास को नजरअंदाज किया है और विकास कार्यों में अड़चने खड़ी की है।
2: इलेक्शंस हमेशा जो है कभी पार्टी सिंबल पे नहीं हुए हैं, हमेशा जो है इंडिपेंडेंट हुए हैं, परंतु इस बार भाजपा ने एज अ स्ट्रैटेजिक मूव बोल सकते हैं उन्होंने पूरे स्टेट में जो है अपने उम्मीदवार घोषित करे हैं। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार जो है हर क्षेत्र में जो लोकल MLA हैं उनके लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे अपने अपने कैंडिडेट जो है उतारे हैं। पिछले 5 साल की भी अगर मैं बात करूंगा भाजपा की सरकार की, वो अगर 2-3 गांव भी गिनाते हैं बड़े क्षेत्र के, हमारे कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में हर जगह जो है हम लोग अच्छे बहुमत से जो है जिला शिमला में बहुत अच्छी लीड से कांग्रेस के जिला परिषद भी बनाएंगे और BDC चेयरमैन और सदस्य भी बनाएंगे।
0: प्रदेश में हो रहे 4 नगर निगमों के चुनावों को लेकर भाजपा आज अलग अलग संकल्प पत्र लाएगी। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि ये केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं है बल्कि सभी नगर निगमों के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट होगा। संकल्प पत्र आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान जारी किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी में, भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार पालमपुर में और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल धर्मशाला में संकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे। नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य व प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल 4 नगर निगमों के चुनाव प्रचार के लिए आज प्रदेश के दौरे पर रहेगी। रजनी पाटिल आज सोलन में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेगी और रोड शो के माध्यम से मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करेगी। कल 13 मई को रजनी पाटिल मंडी, 14 मई को पालमपुर और 15 मई को धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए रोड शो और चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज दिन की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई है, जबकि लाहौल स्पीति में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा और सोलन जिलों के लिए वर्षा व ओलावृष्टि के साथ तूफान आने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
3: पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब मिलकर सुनते हैं हिमाचली गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना शकुंतला व साथियों की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत। आइए अब मिलकर सुनते हैं पिंको देवी की आवाज में ये अगला लोकगीत।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
3: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
3: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
3: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
3: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
3: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
3: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: है जी,
3: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
3: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
3: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
3: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
3: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
3: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
3: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
3: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

0: और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से
3: चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन, मोहन।
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या, विद्या।
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ हाँ।

0: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
0: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: कौन है भाई, अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
0: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
0: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
0: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर

0: चक्र से सम्मानित किया।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
2: नमस्कार
1: साथियों। भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
2: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
1: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
2: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
1: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
2: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
1: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
1: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
2: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर कूद पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए।

0: उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

में वीर जारा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए एक रिश्ता फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

सनी भाई और लीजिए अब सुनिए बागवान फिल्म का गीत। शब्द रचना है समीर की, संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

विजू शाह की बनाई तर्ज पर आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आपने सुना। ये गीत हमने लिया था गुप्त फिल्म से। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विजय पथ फिल्म का गीत। शैली शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत अनु मलिक का है, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

सैनिक भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम घर परिवार।

रेडियो प्रोग्राम घर परिवार में अभी सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है और आज का अंक लेकर आई हूं मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त प्रवेश। चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशी रखिए, गर्मी चाहे कितनी भी हो खुद को हमेशा फ्रेश रखिए। आप सभी श्रोता सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मई का महीना आते ही सूरज देवता कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। सुबह से ही लगने लगता है जैसे सूरज कह रहा हो आज तो सबको अच्छे से पकाऊंगा। लेकिन सखियों, आपको डरने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है क्योंकि पकाने का काम तो हम लेडीज़ करती हैं ना। हाँ, तो अब

शुरू करते हैं गर्मियों वाली कहानी। कभी चेहरा ऑयली, कभी बाल चिपचिपे, कभी टैनिंग तो कभी आईने के सामने खड़े होकर ये कहना, हे भगवान, ये पिंपल आखिर आया कहाँ से? अभी आना था इसे। लेकिन साथियों, घबराइए मत, आज का ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया है ऐसे आसान, घरेलू, मज़ेदार और असरदार ब्यूटी टिप्स, जो मई महीने की गर्मी में भी आपको रखेंगे फ्रेश, ग्लोइंग और कॉन्फिडेंट। तो चलिए, ठंडी ठंडी बातों और प्यारी मुस्कानों के साथ शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफ़र। सखियों, इन दिनों धूप बहुत तेज़ हो रही है और बस 5 मिनट के लिए बाहर जाओ और चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे मोबाइल गर्म होकर हैंग हो गया हो। इसलिए सबसे ज़रूरी है सनस्क्रीन। घर से बाहर निकलने से 15 मिनट पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र अपनी बॉडी के पार्ट जैसे फेस, नेक और बाजुओं पर अच्छे से लगा लें और फिर उस पर अपना सनस्क्रीन अप्लाई करें। दोस्तों, छाता, कॉटन के कपड़े और सनग्लासेस भी जो है गर्मियों के सुपर हीरो हैं। और अगर कोई इस समय हमसे पूछे कि सबसे अच्छा ब्यूटी टिप क्या है, तो जवाब है पानी। महंगे महंगे प्रोडक्ट बाद में, पहले बॉडी को अंदर से ठंडक मिलनी चाहिए, क्योंकि जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो चेहरा भी उदास होकर कहता है, मुझे भी थोड़ा ग्लो चाहिए। जी हाँ, दिन भर खूब पानी पीजिए, साथ में नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ भी आप ले सकती हैं। सखियों, अब थोड़ी सी संगीत की मिठास लेते हैं और लौटते हैं कुछ और प्यारे प्यारे ब्यूटी टिप्स लेकर।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: थोड़ी सी देखभाल और थोड़ा सा प्यार चेहरे पर ले आता है खूबसूरत निखार। और इसी खूबसूरत बात के साथ सखियों समय हो गया है कार्यक्रम के अगले सेगमेंट का, जहां हम बात करेंगे गर्मियों में त्वचा की सही देखभाल की। सखियों हमारा ज़्यादातर समय रसोई में बीतता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये तो पूरा देसी ब्यूटी पार्लर है। आजकल खीरे का मौसम है, आप खीरे का रस चेहरे पर लगाइए, इतनी ठंडक मिलेगी कि चेहरा भी बोलेगा वाह आज तो एसी वाली फीलिंग आ गई। सखियों दही और शहद का पैक त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। घरेलू नुस्खों का भी अपना एक अलग ही कमाल है, धीरे धीरे ही सही असर बेमिसाल होता है। अगर आप गुलाब जल को फ्रिज में रखकर कॉटन से चेहरा साफ करेंगी तो पूरा फेस जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश फील होगा आपको। चेहरा ही नहीं बल्कि गर्मियों में बाल भी परेशान हो जाते हैं, इतना पसीना आता है कि कभी कभी बाल नहीं तेल की फैक्ट्री लगती है। इसलिए हफ्ते में दो बार हेयर वॉश ज़रूर करें और नहाने से दो घंटे पहले नारियल के तेल में एलोवेरा मिक्स करके अपने बालों में लगा लें। नहाते समय सखियों पहले आपको शैम्पू करना है और फिर कंडीशनर लगाकर अपने बालों को अच्छे से धो लें। बार बार बालों में स्ट्रेटनिंग का यूज़ हरगिज़ ना करें और बालों में केमिकल का इस्तेमाल जो है वो तो आपको करना ही नहीं है। क्या आप जानती हैं कि बाल अगर स्वस्थ और चमकदार हों तो साधारण सी मुस्कान भी जो है ना वो बहुत खास लगती है। साथियों अगर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर चाहे कितनी भी क्रीम लगा लो चेहरा कह ही देगा मैं थक चुका हूँ। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें और सबसे ज़रूरी खुश रहें, क्योंकि मुस्कुराहट वो गहना है जो हर इंसान पर सबसे सुंदर लगता है। अगर अभी इस वक्त हमारी किसी सखी सहेली ने फेस पैक लगाया है तो अपना रेडियो सेट ऑन करके ये बात आप ज़रूर सुनें और आप मुझे पता है हल्का सा मुस्कुरा भी रही होंगी, लेकिन ध्यान रखिए ज़्यादा नहीं मुस्कुराना है, कहीं आपका फेस पैक टूट ना जाए यानी उस पर कोई क्रैक्स ना आ जाए, क्योंकि जब ऐसा होता है तो सखियों रिंकल आने का खतरा बढ़ जाता है। तो सखियों अब समय हो रहा है कार्यक्रम में एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेते हैं ये ब्रेक और फिर करेंगे और भी आपके साथ जानकारी साझा।
5: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
6: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
5: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला कार्यक्रम अनुभाग धर्मशाला हिमाचल प्रदेश।
6: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
5: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
6: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़ आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के अंक में। हमारी सभी महिलाओं और जो भी लड़कियां हैं उनको मेकअप करना बेहद पसंद होता है, इसलिए आप जब भी मेकअप करती हैं सबसे पहले अपने फेस पर हल्की बर्फ़ रगड़ने से मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। और हाँ, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना भी शरीर और त्वचा दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सखियों, गर्मियों में हमेशा हल्का मेकअप करें और सबसे ज़रूरी बात, रात में हमेशा मेकअप उतार के ही आपको सोना है। फ्रेंड्स, कच्चा दूध नेचुरल क्लींजिंग का काम करता है। आप एक कॉटन बॉल में कच्चा दूध लगाकर अपने फेस पर लगाएं और ये आपके फेस को क्लीन तो करता ही है, साथ ही स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है। साथियों, सोने से पहले अपने होंठों पर मलाई लगा लें, इससे होंठ मुलायम बने रहेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि तनाव का असर सीधा चेहरे पर दिखाई देता है, इसलिए खुश रहना भी एक बहुत बड़ा ब्यूटी सीक्रेट है। रोज ही अगर आप थोड़ा योग और वॉक करती हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी अच्छा रहेगा, इससे आपके फेस पर नेचुरल ग्लो आता है। और आपको अगर अपना मेकअप करने का शौक है तो आप अपने मेकअप ब्रशेस को हर मेकअप के बाद ज़रूर धोएं, वरना इससे पिंपल होने का खतरा बना रहता है। सखियों, पूरा दिन धूल धूप और प्रदूषण हमारी त्वचा को थका देती है, इसलिए रात को सोने से पहले चेहरा अच्छी तरह से साफ कर लें। और आप रात में अपने फेस पर गुलाब जल भी लगा सकती हैं। अगर आपको धूप में टैनिंग हो गई है तो टमाटर के रस में शहद मिलाकर लगाएं और इससे आपकी टैनिंग तो खत्म होगी, साथ ही ये आपको ठंडक भी देगा। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन तनाव का असर सबसे पहले हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, इसलिए खुश रहने की कोशिश करें, योग करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और ये ब्यूटीफुल ट्रैक भी सुनें।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सखियों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सिर्फ महंगे मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट से ही खूबसूरती आती है? शायद नहीं, क्योंकि असली चमक तो तब आती है जब हमारा खान पान अच्छा हो, मन खुश हो और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हो। ना क्रीम में, ना पाउडर में, ना ही महंगे श्रृंगार में, असली सुंदरता छुपी होती है अच्छे खान पान और व्यवहार में। सखियों, हरी सब्जियां और रंग बिरंगे फल किसी नेचुरल ब्यूटी पार्लर से कम नहीं होते। गाजर, टमाटर, खीरा, पालक, आलू और चुकंदर जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से आकर्षक बनाते हैं। हरी सब्जियां, फ्रूट्स और पर्याप्त पानी हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ रखता है, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो चेहरा अपने आप दमक उठेगा। अब हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जिसे देखकर हम अक्सर खुद को रोक नहीं पाते। जी हाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर और तली भुनी चीज़ें। कभी कभार खाना तो ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ जंक फूड खाना शरीर और स्किन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। पिंपल्स, आलस और मोटापा, ये सब गलत खान पान का ही असर होता है। आपने सुना तो होगा, स्वाद के पीछे भागेंगे बार बार तो चेहरे का निखार हो जाएगा फरार। अरे आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये बालों और स्किन दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सखियों, आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग दिल से खुश रहते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है। चिंता, तनाव और गुस्सा हमारी खूबसूरती को कम कर सकते हैं, इसलिए मुस्कुराइए, हंसिए और हमारे साथ इंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

तो सखियों आज के लिए बस इतने ही ब्यूटी टिप्स हैं हमारे पास, फिर लेकर के आएंगे किसी दिन और ढेर सारी जानकारी ब्यूटी टिप्स से ही रिलेटेड। और उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि खूबसूरती के साथ साथ हम आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो चलिए अब चलने से पहले आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

0: इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया विकास पठानिया ने। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराती रहिए। श्रोता सखियों नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर का 1 बजने को
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। NTA ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। NTA ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु

0: अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gana Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of NDA-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. The National Democratic Alliance, NDA, returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. The Bharatiya Janata Party emerged as the dominant force with 82 seats, while its allies, the Ahom Gana Parishad and the Bodoland People's Front, won 10 seats each. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that the decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation, CBI, for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following inputs examined.

आशा जी के गाए इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के इस कार्यक्रम की। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि ये कम सुना गाना है। जी हाँ, ये आपने कम सुना है लेकिन बेहतरीन गाना है। और एक साथी लिखते हैं कि शानदार गीत है, कम सुना है फिल्म ये रात फिर न आएगी। और आशा जी की गायकी का तो अंदाज ही अलग है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चांद जब भी आसमान में आता है तो सुनहरे सपने साथ मिलाता है। रात में सपनों के आगोश में गहरी नींद लेते हैं। सुबह की लाली पहनकर जब सूरज निकलता है तो सब सपने वास्तव लगते हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने शाम की बात का जिक्र किया है। सच में शाम एक ऐसा वक्त है जहां उम्मीद खत्म होती है, तो सुबह वो पल है जो हर एक उम्मीद का एक नया पल एक वक्त लेकर आती है, एक सुनहरी किरण के साथ, सुबह के साथ। और एक साथी स्नेहिल नमस्कार के साथ लिखते हैं कि शब्दों को चुराकर गीतों में संवारे हूँ मैं, और शामे दिल की कसम आ भी जा, आसमान से आया फरिश्ता, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो मैंने कहा ना कि आप लोग भी गानों के कुछ कुछ करीब पहुँच चुके हैं। शब्दों को तो आपने ढूंढ लिया लेकिन गानों के बहुत करीब हैं। एक कमेंट में लिखते हैं कि हवा के

धीमे झोंकों में जब यादें अपनी दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की किताब का कोई पुराना पन्ना फिर से मुस्कुरा उठा हो। ढलती शाम अक्सर तन्हाई की सुर्खी ओढ़ लेती है, लेकिन वही तन्हाई हमें खुद से मिलने का मौका भी देती है। इंसान अक्सर मंजिलों की चाह में रास्तों के सुकून को भूल जाता है और ज़माना उसे कामयाबियों के तराजू में तौलता रहता है, मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की भीड़ में खो जाने के बाद भी रूह की असली चमक वही पा सकता है जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर एक नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत गहरी और सच्ची बात आपने लिखी है कि टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर वो नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि सदियों से मानव जाति ने चंद्रमा को प्रेम और प्रेमियों से अटूट रूप से जोड़ रखा है। कहीं पर वो प्रेम करने वालों को आपस में एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में एक बात करने वाला साथी भी मानते हैं। वहीं एक साथी लिख रहे हैं कि आज की इबारत बड़ी दिलकश है। तो दूसरे साथी ने लिखा, आज शब्द गीतमाला में दोपहर में ही शाम रात और चांद की बात होगी तो शीतल चांदनी का अनुभव कराते हुए गाने इस चिलचिलाती धूप की तपिश में थोड़ा सुकून का एहसास जरूर कराएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मियों में गाने बड़ा ही सुकून देते हैं साथियों। एक साथी ने ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है हमारे पास। लिखते हैं, इबारत अनुरूप संभावित गाने हैं, टिम टिम तारों के बीच, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, चांद सी महबूबा हो, ठंडी हवाएं, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका सुबह का तारा, सच्चाई छुप नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत दिल के अरमानों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है, शाम की रोमानी ख्याल रातों में अंगड़ाई लेती है, टिमटिमाते तारे चांद की ठंडक उन पर स्नेह की वर्षा करती है, सुबह जब ख्वाब टूटता है तो सूरज की रोशनी मानो पुकारती है, चलो अभी मंजिल दूर है, बहुत कुछ करना है, बहुत चलना है। ख्वाब और हकीकत का ताना बुना पर आधारित लाजवाब इबारत है, संगीत में सफ़र का इंतज़ार रहेगा। तो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है।

साथियों बताइएगा जरा कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो वो ख्वाहिश क्या होगी, जरा बताइए। तो जब जिक्र आसमान का चला है तो हम भी जरा देखें कि कौन है वो फरिश्ता जो हमें प्यार का सबक सिखाने के लिए ऊपर से आया है।

मोहम्मद रफी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है, वाह भाई वाह, एन इवनिंग इन पेरिस का ये जबरदस्त गीत, हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है, शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस ज़िंदगी में, तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में, आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है, आपका जवाब हमें मिल गया। बहरहाल कि आपकी ख्वाहिश यही है। तो भाई दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजीब सा लगता है, लगता है यज्ञ सफल हुआ, लंबे इंतज़ार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफ़ी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहाँ मिलता है जहाँ हरियाली, पानी, नदियों की कलकल, झरनों का कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहट हो, और इसी को बचा कर रखना हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ, और वो साथी जो अब तक शब्दों का चुनाव नहीं कर पाए हैं उन्हें शायद सहूलियत हो जाए। तो आज का टेक्स्ट है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर ज़माना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है, और आपको खोजने हैं इनमें से शब्द। एक कमेंट आया है कि आपने सही कहा, जो भी फैसला हो अच्छा या बुरा हमें दोनों को स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ देखें तो सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है, जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि नया आसमान खोजने का साहस रखता है। एक साथी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत है, उत्सुकता दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ, गीतों का आनंद ले रहे हैं हम, आप आए बाहर आई और आपके कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुँच रही है। बहना जी बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, आप सभी का दिन शुभ हो। तो वहीं एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, अभी तक के सुरीले सफ़र में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं, कुछ अनसुना गीत, कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है और बड़ी ही उसकी जो शब्द हैं बहुत ही सुंदरता से चुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुखड़े से की है, ये प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रोमांटिक माना जाता है, जो मिलन और विरह दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। गीतों में चांद से बातें करना या उसे संदेश वाहक बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है, क्योंकि यह मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत शामिल, आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।

एक कमेंट में लिखा है कि वही सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचें, तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों, हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा पयाम लाती है। आप बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम, उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज़ अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। ज़रा बताइए इसके शायर का नाम।

0: तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाज़ें थीं सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन हैं, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा

0: करता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सब ने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नज़र आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफ़ी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा, ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फ़ोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती है। मैं हर रोज़ ही, कल ही मैंने एक फ़ोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो ही अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया, क्या लिखा है इन्होंने, जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96.96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आँखों में गर्व की चमक को देख कर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है माता पिता के लिए, गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फहरिस्त पेश करता हूं। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की ज़िंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद्र तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद्र तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार, और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफ़र में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है, और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का, जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई, खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है, ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है, ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है, ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने

लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों, जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है, तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है। आपकी बातें, आपके अनुभव, वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है, बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है। इसके गीतकार और संगीतकार कौन है, सुनिए ज़रा।

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सब ने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था और इसमें गायक स्वर थे तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आज़ादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी

क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। अगर कहीं तारा ज़मीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूँढ पा रहा हूं। तू मुझे वो सही रास्ता ढूँढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूँगा कि मुझे वो हिम्मत फरहाम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूँ। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों, ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफ़र तय करते रहें। साथियों, बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बना कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते लेकिन हाँ, अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं ज़रा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूटकर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। हमारे एक साथी ने लिखा है गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा और यादगार शाम 27 मई साल 16 की है, 2016 की। शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था, बेहतरीन उपहार, और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है, संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सबने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफ़र की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए ज़रा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नज़र रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

0: प्यार हुई।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर, जी हाँ अब समाप्ति की ओर, क्या समाप्त हो ही गया क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन उन नर्सों के सम्मान में समर्पित है जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली नर्सें केवल इलाज में ही नहीं बल्कि मरीजों को मानसिक सहारा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका धैर्य, करुणा और सेवा भाव उन्हें समाज में एक खास स्थान दिलाता है।

नर्स का कार्य केवल दवाइयां देना या मरीजों की देखभाल करना नहीं होता, बल्कि वे मरीजों के दर्द को समझती हैं और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाती हैं। कई बार मरीज अपने परिवार से दूर होते हैं, ऐसे में ये परिचारिका ही तो उनका सहारा बनती है। कठिन परिस्थितियों में लंबे कार्य घंटों और मानसिक दबाव के बावजूद वे अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाती हैं। कोरोना काल जैसे संकट के समय में भी नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की सेवा का उदाहरण पेश किया था।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें ये सिखाता है कि सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ी मानवता है। ये दिन हमें नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर देता है। हमें चाहिए कि हम उनके कार्य की सराहना करें और उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। एक छोटा सा धन्यवाद और सम्मान भरा व्यवहार भी उनके कठिन परिश्रम को सार्थक बना सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगी और उसके परिजन और डॉक्टर के

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई।

बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्य टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की

0: अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ER News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं

पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

नजर को दिल, किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूँ फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई, दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी।

0: सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की कस्मों की और मोहब्बत में फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का, शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज़ में। क्या कहता है ये गाना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, आइए

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने और घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं व वर्चुअल बैठक जैसे उपाय अपनाने की अपील भी दोहराई। आयात कम करने और इस संकट से उबरने में देश की मदद के सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय लोगों को एकजुट होने और देश के संसाधनों पर बोझ कम करने का दायित्व निभाने की जरूरत है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त और सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा पूर्ति दावों का भी शीघ्र निपटान किया जाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंडी में विकास कार्यों को गति देने के बजाय पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आवंटित 15 करोड़ रुपए को सरकार ने वापिस लेकर दूसरी जगहों पर खर्च किया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है।
2: मंडी में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी नगर निगम बनाने में सफल हुई है और अब की बार भी सफल होगी बहुत बड़े बहुमत के साथ। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से मंडी को, पूरे हिमाचल प्रदेश को नजरअंदाज किया, विकास कार्य के दृष्टि से मंडी को एक बार नहीं अनेकों बार जलालत की है, तो लोग जो है बहुत गुस्से में है वर्तमान कांग्रेस सरकार के, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीती।
0: चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने आज शिमला के समीप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सुखबीर सिंह संधू ने अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG

0: 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित व राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वो सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं, जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर आज सुबह हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण क्षेत्र में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना जिले में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं चंबा जिला की चिट्ठी। लेखक हैं विकास ठाकुर और वाचिका हैं प्रभा शर्मा।
2: प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की घोषणा के बाद जिला चंबा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और प्रत्याशियों ने फील्ड में जाकर अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जिला चंबा में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर पहुंचने लगा है। 17 मई को मतदान होगा। जिला में 3 नगर निकाय हैं, जिसमें चंबा नगर परिषद, डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी शामिल हैं। इस बार महिलाएं काफी संख्या में चुनाव मैदान में हैं। वहीं युवा उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 15 मई को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को संपन्न होगा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के अनुसार जिला चंबा में कुल 319 ग्राम पंचायतें हैं। पहले चरण में 118 पंचायतों में चुनाव होगा और 676 वार्डों के लिए मतदान होगा। चरण 2 में 115 पंचायतें कवर होंगी और 650 वार्ड में मतदान होगा। तीसरे चरण में 86 पंचायतों के 467 वार्डों में चुनाव संपन्न होगा। भरमौर और पांगी में 2 चरणों में मतदान होगा। उन्होंने कहा कि कुल 1019 पोलिंग स्टेशन इसके लिए स्थापित किए गए हैं, जिसमें 3,99,358 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम जैसा अनुभव देने के लिए गत दिनों जिला चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आईपीएल फैन पार्क का आयोजन किया गया। चंबा वासियों ने 3 मैचों का सीधा रोमांच चंबा की वादियों में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर लाइव देखा और फैन पार्क में पहुंचकर विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। मैच के प्रसारण के साथ साथ यहां आने वाले दर्शकों के लिए स्वयं सहायता समूहों की ओर से विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां लोगों ने स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी लिया। इसके अलावा युवाओं और बच्चों के लिए कई तरह के मजेदार गेम्स और म्यूजिक का भी प्रबंध किया गया था। इस 2 दिवसीय क्रिकेट महाकुंभ को लेकर चंबा के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। जिला चंबा के भटियात उपमंडल के ककीरा लाहड़ू मार्ग पर पर्यटकों से भरे इनोवा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे। घायलों में 2 बच्चे, 1 महिला व 1 पुरुष शामिल हैं। मृतकों में 5 पर्यटक गुजरात के रहने वाले थे, जबकि दुर्घटना में मंडी निवासी चालक की भी मौत हुई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने दुर्घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जिला चंबा में नशा विरोधी अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने चिट्टा व अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए आवश्यक पग उठाए हैं, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। जिले में नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों की रोकथाम और उनकी धरपकड़ के लिए

0: कार्यतंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों में जागरूकता लाई जा रही है ताकि वे अपने संस्थानों में इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएं। वहीं विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में चिट्टा व अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। नशे के खिलाफ चलाए गए पुलिस विभाग के विशेष अभियान के तहत जिला चंबा में एनडीपीएस मामलों में संलिप्त 5 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बाढ़ व बादल फटने जैसी संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों के उद्देश्य से एनएचपीसी करियां स्थित चमेरा विद्युत परियोजना 2 व 3 में एक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मेगा मॉक ड्रिल के दौरान अचानक बाढ़ व बादल फटने की स्थिति को आधार मानते हुए रावी नदी के किनारे जलस्तर में अचानक वृद्धि, राष्ट्रीय राजमार्ग 154A पर भारी भूस्खलन तथा विद्युत केंद्र में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने जैसी संभावित परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों का पूर्वाभ्यास किया गया। चंबा सदर से भाजपा के पूर्व विधायक पवन नैयर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि चंबा में कांग्रेस राज के दौरान एक गिरोह सक्रिय है जिसने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी हैं। पवन नैयर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग दुखी है।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
3: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना
2: और वो लेट जाए बस। हाँ, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की, पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
3: सही बात है।
2: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं। और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
3: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है। लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
2: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी हैं, वो बहुत नाजुक होता है
3: जी।
2: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है।
3: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से। और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों, या आपके बागीचे में लगे हों, या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ पे आप लगा सकते हों, तो ज़रूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
2: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
3: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रास्ते की निशानी बन जाता है।
2: हाँ।
3: भाई तुम आगे वो रास्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। हाँ। है ना, कई बार ऐसा होता है।
2: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है दीपा। और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके, और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण

0: और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। यह सुरक्षा कवच का काम करता है जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती हैं।
1: बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा उसके दिल पर क्या बीतती है और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
0: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं या प्रदूषण बढ़ रहा है
1: जी,
0: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं,
1: सही के बाहर
0: ताज़ा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफ़ी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इसी बारे में और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम। एक बार फिल्म से ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

0: नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज़ बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज़ दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टियाँ लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय: ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकल निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं, और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं। 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुँची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये ख़ास तौर पर वो ज़रूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन

0: अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि ये नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनका उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा महेश्वरी।
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इस बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
3: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजें, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
2: बिल्कुल।
3: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक के संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
2: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
3: क्या बात है।
2: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
3: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जाँच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
2: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन

0: हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं हाँ। और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफ़ायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
1: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफ़ी किफ़ायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था, ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेज़ी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
0: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
1: हाँ।
0: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी।
1: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाया जाए, उनका ब्रांड इसी चीज़ पर काम कर रहा है।
0: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं, और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
1: और वनीता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई, और इस तरह से कहते हैं ना कि वो आगे बढ़ती रहीं और अपनी मंजिलों को हासिल करती रहीं, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहें।
0: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
1: जी।

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की एक लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमज़ोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की एक लोहार की यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियाँ भी प्रचलित हैं, और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे, और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया, और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ ज़रूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज़ को आप छुपा दीजिए कहीं, और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज़ ढूंढ कर देनी है। तो सच में उन्हें इतना मज़ा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियाँ सुनाना बड़े मज़े से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियाँ नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियाँ उनकी चार चार दिन, पाँच पाँच दिन ख़त्म ही नहीं होती थी। हम इंतज़ार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएँ किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज़्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मज़ा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा

0: में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई हैं, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो उनके बच्चों के जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
0: हाँ
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीज़ें होंगी ना तो बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे बड़ा हो रहा है।
0: इसी तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे, जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, और बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
1: चलिए

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं। एक बार पुनः से सुनिए विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी, अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी,
1: ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा

0: जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब ख़राब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस ज़माने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले, और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाज़ारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखें, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए, और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था, और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी हैं सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
0: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
0: जी।
1: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना, और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
0: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट

0: लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है? कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे ख़त्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
0: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
1: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
0: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
0: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
0: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता जी, है हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले
0: लेकिन
1: लो।
0: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
1: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
0: पुरानी,
1: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
0: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
0: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
1: जी।
0: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
1: जी जी, जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे अनंत जो कर रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी जी जी उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह,
1: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज़ बज रही थी, आँखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दुर्वांची जोड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
0: जी,
1: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
0: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
1: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी
0: जी।
1: और वहाँ गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
0: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
1: जी
0: जरूर सुनेंगे।

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरापुरकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं आप, ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बार जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरी जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्धसत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूँ तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है उस कैरेक्टर

0: नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया। मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी भिट्टी का रोल दे रहे, ढाई तीन सीन गए हैं, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है।

0: उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था।
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी जी।
1: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी जी मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक ख़त्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फ़ोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहाँ भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो, उधर जाने की ज़रूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बेटक नहीं है। मैं वहीं रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज़ के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आईं, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं। ये जयप्रदा

0: कुछ नहीं कर पा रही हैं, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, वो उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्यराजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी हैं। और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे। तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है, जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज़ से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है। इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियाँ मिलती हैं, लेकिन हमें तालियाँ मिलती हैं।
0: तो उम्र एक अलग चीज़ है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत ज़रूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे, ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा ज़रूर करूँगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूँ
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट साहब बहुत खुश हुए, और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली, और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
0: जी जी।
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे, तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है, कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले ज़रूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे, और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था।
0: मुझे ऐसा लगता है कि
1: प्रोत्साहित करना था।
0: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
1: जी,
0: वो ही आपका इसमें
1: जी
0: हुनर।
1: हाँ।

0: तो उस वक्त मैंने किया, और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी। और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है। लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फ़ोटो निकालने की। तो वो मैंने फ़ोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार हैं, वो यादगारें हमें काम आती है,
1: जी
0: वो बहुत बढ़िया होती है।
1: जी
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है।
1: जी
0: वही तो हमारी, मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है।
1: जी
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूँ क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूँ और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ। पुराने शिल्प मुझे बहुत
1: वाह
0: पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने, तो ज़रूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता हूँ।
1: वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। जी आपने कभी लिखा है, जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा ज़रूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर वी वा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग मैं उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है।
1: जी
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उस

0: उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की मायाई हो गई जैसे।
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी,
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको।

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे जाती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: चार मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्क्रियों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: ICCR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि AI का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को स्वचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालय में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गढ़ परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुछ फिल्मी भजन। कार्यक्रम का अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, काजल फिल्म से।

फिल्मी भजनों के कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुड्डी फिल्म से ये भजन। इस भजन में आवाजें दी है वाणी जयराम और साथियों ने।

श्रोताओं, फिल्मी भजनों के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे युवा मंच कार्यक्रम।

युवा साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम युवा मंच में। रेडियो फ्रिक्वेंसी वही आपकी जानी पहचानी से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, जहां हम सब आपको एंटरटेन करने के लिए लेकर आते हैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम युवा मंच। जी हाँ युवा साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई भाग रहा है समय के पीछे, कोई अपने सपनों के पीछे तो कोई सुकून की तलाश में। इसलिए आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए ज्यादा एनर्जी के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए। वेल, इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरटेनमेंट की सुरीली डोज और आपकी अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी आकाशवाणी धर्मशाला के केंद्र पर। इसके लिए बस आपको यूं ही जुड़े रहना होगा हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa. आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं युवा मंच कार्यक्रम। जी हाँ, आजकल बहुत सी परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो रहे हैं और ऐसे ही हमारे युवा साथी इस दुविधा में है कि वो आगे चलकर अपने जीवन में कौन सी दिशा में लेकर इसे जाए और अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कौन सा करियर विकल्प चुनिए। तो चलिए आज प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं एक ऐसे ही करियर ऑप्शन की जिसमें आप चाहे तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वेल, आज प्रोग्राम में आपसे बात होने वाली है स्वास्थ्य के क्षेत्र में करियर विषय पर। जी हाँ युवा साथियों, अगर आपके अंदर सेवा भाव है और अगर आप पेशेंस रखना जानते हैं तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए एकदम सही साबित होने वाला है। आपको बता दें कि हेल्थ केयर सेक्टर बीमारियों की रोकथाम, निदान, उपचार और पुनर्वास के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इसमें अस्पताल, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस और इसी तरह के बीमा क्षेत्र के कई सारे जो है वो ऑप्शंस जुड़े हुए हैं जिसमें आप आगे चलकर जो है अपने किसी भी करियर विकल्प को चुन सकते हैं। आपको बता दें कि हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो है वो आवश्यकता रहती है। इसके साथ ही अस्पताल प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञ भी जो है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में इसके लिए आपको ढेर सारी संभावनाएं मिलने वाली है। तो चलिए इसके बारे में आपसे बातें तो यूं ही होती रहेगी, फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
1: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
2: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
3: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
5: Nexa. बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं युवा मंच कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में करियर, इस विषय पर। युवा साथियों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में करियर एक बेहतर विकल्प है, जिसमें 2020 से लेकर 30 के बीच 16% वृद्धि की उम्मीद की गई है। वहीं इस क्षेत्र में मुख्य करियर विकल्पों की अगर हम बात करें तो आप डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस और अस्पताल प्रबंधन के रूप में शामिल होकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये क्षेत्र प्रत्यक्ष रोगी की देखभाल और जो है वो नैदानिक एवं प्रशासनिक भूमिकाएं भी प्रदान करता है। बात करें डायरेक्ट पेशेंट केयर की तो आप इसमें डॉक्टर चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं देकर मरीजों का इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आप MBBS, BAMS और BHMS जैसी जो है वो ऑप्शंस को करियर के रूप में चूज करके इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं नर्स के रूप में भी आप मरीजों की देखभाल कर सकते हैं। इसके लिए आप BSc नर्सिंग और GNM की जो है वो आगे एजुकेशन लेकर इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। बात करें फार्मासिस्ट की तो ये दवा वितरण और फार्मास्यूटिकल ज्ञान प्राप्त करते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट शारीरिक पुनर्वास और व्यायाम विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं। युवा साथियों, आप चाहे तो रेडियोलॉजिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियंस के रूप में भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप डायलिसिस टेक्नीशियंस के रूप में किडनी के मरीजों की भी देखभाल कर सकते हैं। आप

ही तो हॉस्पिटल प्रबंधन के क्षेत्र में भी आगे बढ़कर स्वास्थ्य प्रणालियों के बारे में जो है आगे जानकारी हासिल करके इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जानकारियां यूं ही चलती रहेगी, फिलहाल समय हो रहा है इस म्यूजिकल ब्रेक का।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: जी हाँ, बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त सुन रहे हैं युवा मंच कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में करियर विषय पर। युवा साथियों, आपको बता दें कि अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप 12th के बाद जो है वो BSc नर्सिंग का 4 वर्षीय कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बी फार्मा, ANM, GNM में डिप्लोमा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस क्षेत्र में आगे बढ़कर हॉस्पिटल, क्लिनिक और अन्य कई तरह के जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में भी है जो वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य और रोजगार एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा स्वास्थ्य उत्पादकता और बेहतर रोजगार के अवसर लेकर आता है, जबकि सुरक्षित रोजगार आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है। तो चलिए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं बेहद ही प्यारा सा म्यूजिकल नंबर। सुनते रहिए और जुड़े रहिए यूं ही आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। चलिए श्रोताओं, आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज रात्रि में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। इसके अलावा शाम 7:45 पर भी प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। 6:05 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत और 6:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम। 7:10 पर सुनेगा किसान वाणी कार्यक्रम। समाचार हमारे केंद्र से सुने जा सकते हैं शाम 7 बजे हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11 बजे ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 8 बजे आप सुनेंगे विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। एक ही कलाकार कार्यक्रम, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:15 पर, जिसमें आज हम बात करेंगे पार्श्व गायिका आशा भोसले की और सुनेंगे उनके गाए कुछ प्यारे प्यारे से गीत। रात 9:30 पर आज आप सुनेंगे हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम धाम गीतादि। सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज रात्रि में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलप

0: एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश परियोजना प्रदेश में आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में प्रभावी व दूरदर्शी पहल सिद्ध होगी। शिमला में आज परियोजना की प्रगति व क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,687 करोड़ की लागत की इस परियोजना का उद्देश्य आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे की पुनर्स्थापना करना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों व बागवानों के लिए मजबूत सुविधाएं और ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि प्राकृतिक आपदाओं के समय उनकी फसल और आजीविका सुरक्षित रह सके। इस बीच मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य के लिए 31 मई तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों को पोषण युक्त भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। प्रदेश भाजपा ने 4 नगर निगमों सोलन, पालमपुर, धर्मशाला और मंडी में आगामी 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि सोलन को प्रदेश का सबसे स्वच्छ, सुरक्षित, हरित और स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। उधर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला को आधुनिक, सुव्यवस्थित, पर्यावरण अनुकूल और विश्व स्तरीय पर्यटन शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा तैयार किया गया ये संकल्प पत्र केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि धर्मशाला के भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट है। सुधीर शर्मा ने कहा कि ये संकल्प पत्र शहर की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
1: नगर निगम के सामूहिक विकास की दृष्टि से पार्टी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है, ये संकल्प पत्र पूरे नगर निगम को एक दृष्टि में रखते हुए तैयार किया गया है। शपथ पत्र में मुख्यतः जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नगर निगम धर्मशाला को विकसित करने के लिए मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए विचार रखती है।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार ने नगर निगम पालमपुर के चुनाव के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट व संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र पालमपुर के समग्र विकास का रोड मैप है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी सोलन नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नगर निगम चुनाव प्रभारी व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की उपस्थिति में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सोलन शहर का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की समस्या का जल्द निपटारा किया जाएगा और शहर को शत प्रतिशत सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा।
2: पिछले 3 साल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, सोलन की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि दिक्कत थी, लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए जो है वो अलग अलग वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को ठीक करने के लिए खर्च किया गया है। हमारी कोशिश ये भी है कि हर वार्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए।
0: इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 5,953 नामांकन पत्र दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि जिले की 273 पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं।
3: हमारे 8 ब्लॉकों में टोटल 74 जिला परिषद के लिए नामांकन भरे गए हैं। वही पंचायत समिति में टोटल 474 नामांकन भरे गए हैं। उसी तरीके से जो हमारी 273 पंचायतें हैं उसमें टोटल हमारे हैं 1,452। 14 और 15 तारीख तक का 10 से 3 बजे तक का समय दिया जाएगा अपने कैंडिडेटों को विड्रॉ करने के।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: चाहिए। साथ सेल्फी लेंगे?
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। जी हाँ श्रोताओ, आज की सुहानी सी शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए लेकर आ गए हैं हम फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज की शाम को और भी सुरीली और सुरमई बनाएंगे हम और आप मिलकर सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म के इस गीत से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने, संगीत शंकर जयकिशन का। ऐसे ही प्यारे प्यारे से सदाबहार फिल्मी गीतों को सुनने के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value, with its bold design and spacious comfort. It's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: श्रोताओ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत, गीत ऐसे जो हमारे दिलों को छू जाए। वेल, कार्यक्रम में अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे हमने लिया है फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, संगीत शंकर जयकिशन का। गीत के बोल लिखे है हसरत जयपुरी ने।

0: into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
4: सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शागिर्द फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: मई धमाका आ गया है। आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: जी हाँ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप आनंद ले रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शिकारी फिल्म से आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, संगीत जी एस कोहली का।

जी हाँ श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे मौज जागराएं दिया कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई भैन जो सारे श्रोतियां जो किसान मित्र दी संझदी इस वेला टियाले ते दो हथ जोड़ी के राम राम। कने अज किसान साथियो लंबरदार हो रहा टियाले पर मेरे सोगी हैं राम राम जी।
1: राम राम किसान मित्र जी, राम राम तो अंजो भी कने सारे किसान बागवान भाई भैन जो लंबरदार दी तरफ ते राम राम।
0: हाँ तो जी दिखा भी जियां कि किसान साथियों जो पता कि कार्यक्रम दे विच जड़ा सा एक हां आज पहाड़ी नाटक सुन दे ना।
1: जी बिल्कुल,
0: तो नाटक भी यहां सुनना लेकिन उससे पहले कुछ एक जड़े से स्नेह सुन लेंदे ना।
1: बिल्कुल

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: दीदी नौकरी लग गई।
6: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
5: हाँ दी, नया मोबाइल।
6: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
5: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
6: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
5: पर दीप,
6: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
5: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
6: अच्छा।
7: RBI कहता है
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
10: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
9: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
10: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
9: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
8: Nexa.
11: किसान साथियों, एक कुछ संदेश अहां तुहाडे तक पहुंचा करदे थे। दिखा किसान मित्र जी, बे जड़ा असां अजकल कणका दी फसल जड़ी लेई है ना,
12: बिल्कुल बिल्कुल,
11: इस बारी तां अंबरा जड़ा थुक सीम किट्ठा कराई ता।
12: हां दिखा भी जलू मौसम जल उपर अंबर गड़गड़ात पाइंदा ना, ता हां दा किसान थोड़ा चिंतित हो जंदा
11: जी।
12: कने ते थोड़े इससे क्या होंदा कि सा थोड़ी अपनी कमी रफ्तार छा जरूर दिंदा ना
11: जी। बिल्कुल,
12: कने होना भी ए चाहिदा कि दिखा जलू अहां दे खेतरा विच कम कार चले होंदे ता अहां सारे मिली के जड़ा सा एक ही दूए दे कम जो करने च जड़ा सा सहयोग करदे हन, कने सारे मिली के एक ही दूए दे कम जड़ा अहां कियां कमाना है कियां ए करना है, ता अहां तिना कम्मा जो अहां सारे ए जड़े सा करदे हन कार्यक्रम है मौजां ग्राएं दियां। कने ग्राएं विच ता दिखा कोई ना कोई रौनकां कोई ना कोई मौजां जड़ियां सा लगी रहनियां, कने होना भी ये चाहिदा कोई कि दिखा अगर ग्राएं विच अहां सारे मिली जुली के रहेंगे एक ही दूए दी मदद अहां करगे तो दिखा भी अहां दे किसान साथियों जो कोई दिक्कत परेशानी जड़ी सह नहीं होंदी, कने तिना दे कम काज खेती दे तिना दे पूरे जड़े सह चलते रहते हैं ना
11: जी। ठीक लाया।
12: हाँ जी, कने इसते सोगी दिखा भी हुण गर्मी दा जड़ा ये समा चलिया जिसी कि अहां बोलते कि फायर सीजन जिसी अहां बोलते ना कि फायर सीजन चल लिया, इन्हों दिन हाँ जंगलों में बड़ी भरी अगजनी हाँ जो देखने मिलती है
11: जी।
12: तो ग्राएं विच ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसी एकता होना चाहिए कि सारे मिली जुली के जड़ा सा प्रयास करन, कने अपने बन आस पड़ोस कियां बचाना सारे प्रयास करन।
11: बिल्कुल, तो सोलह ने गल गलाई यह गल्ला पर हाँ फिरी ते गल कर गए, लेकिन हूँ जड़ा हाँ अपने किसान साथियों
12: हाँ
11: नाटक सुनाना है।
12: हाँ जी,
11: तो चल सुन दे नाटक
12: जी।

0: शांति ये थकी यही मैं इस चोड़े चुकी करिए जर के गां दे ये रखे हैं सिए पेई न जाम ये तेरे कुर्सी ये थल्ला न पेई या रख जर के खसकेरी दे लाई दे हाथ में ये
1: ओहो ले ले ले रखी दे सियो कुछ नहीं खान दे सियो सेरू बन नहीं पाया मैं नी ओंदा से थकी यही तो ले आई मैं मीने दा राशन चोड़ा भरी के दिखता कने कल्ली चुकी ले आई है
0: ना रोज कुण चली रहंदा था दुकाना महीने का कट्ठा लियो ना तो खरा रहंदा मिये बरगत रहंदी रासने च रोज चली रिया चोलुआ चुक्की करिए
1: खरे टाइम में आई तू चा भी बनाई रखियो मैं ए ले कने लेंदा ते कुछ बिस्कुट दे पैकेट पुकड़ ता काट मिये खाई लेनी है ना
0: जड़ी ये कंडू सुका दा मेरा कने चा ही ले आई है पानी दे घुट पिया पहले लिया दो के कुट लिया पानी दे जड़ी यह चाई ची मरी रहनी है एक है चंपा हुई ये कन एक शांति हुई ये नी भी कुसी दी जान होवे तमी ना चाह कड़पाई के रखनी लिया पानी लिया जरा के ठंडा ठंडा
1: तमे चाय ले आंदी ना तू पानी पी ले यहाँ इस कप्पे चुक्की
0: और जड़ी ये रहना दे इस ये थू लिया पानी लिया अड़िए हाँ
1: रासन ते अपने करे लंदा एहसान तू मुंजो दसा दी ए ले पानी पी ले
0: हाँ आजकल तो पानी पीना भी महंगा हो भाई लोको पानी ये पीने दा भी सान जता दे दे ओ मिये हाँ हाँ हाँ ले ले रख इस ग्लासे कने दे चाय दे कड बिस्कुट आई पैकेट कड कने ए ले ले ले दो कि तू कड़ी ले ना कन बाकी फिंडवे दे दे अमी ये खाली हत्था होना ने आने दे करा जड़ी ये बुरा लगदा दे दे फिंडवे भी
1: ले ले ले एक फाड़ी इंदी है मैं आहा खाई लेनी है ना ले पर अड़िए केसरो दिखता लंदे कुतु ते आए बिस्कुट गई ये मकोड़वी दुकान ना यो
0: खड्डा है जाना और मकोड़ुए दुकाना ले आने और कोई चली गया मैं दे दे ये आलता च ग्राए हाड़े दा सही ये फेमस मिये
1: अरीके की बिल ले दे बिस्कुट लगा दे मंजो खा तू चखता सही
0: जी बापड़िया कसूर हो है ना तो ए इदी और दे दे ये चीजें नहीं लाने दाग दे पैकेट कर रहा है इसी यो आड़ी की शांति ये आ जड़ी ये बेसुआद दे कर दिख पला लगा था कि बरखा पे ही हो ना च लगा देने बिल ले दे
1: ओ चुड़ती भी है मकोड़ुए दी दुकान पता नहीं फिरी मुंजो नहीं तीस विश्वास होंदा दिखता इस तरीक लिखी होनी है पढ़ता कुछ दी लिखियो पढ़ पढ़ ए पक्का एक्सपायर ना होए ए ए दिख मिये ए ता पिछले साले दा मुकी है बिस्कुट कने मकोड़ो अल्ली भी बेची आदा कोई पता नहीं इसने समाने दा मैं तक लांदी तू चोलुए खुली के दिख लंदा क्या क्या ते हैं
0: ये की दिया गप्पा मारा दी ला ला मिंजो दे तू मैं पूपड़ दी मिंजो भी पूपड़ है चैन नहीं ओंदी ओ मेरी ये जानी है मकोड़ुए दा मुंड फूकिया
1: तू और समाना भी दिख दिखता ए दिख ए खलार दी मैं सब कुछ
0: खोल खोल ओ मिंजो
1: इना साबना दिख
0: ओ
1: मिये की है मरना इन्नी तो सामने लगना ही नहीं ये तो दो साल पहले मुकी या चरड़ो यानी और तजो
0: ए ए बिस्कुट आए पैकेट फिर ये दिख पला ब्रेड ब्रूडो इन्नी मिंजे लगा था सारा खराब दे ते इन्नी
1: मैं मिगी यही प्याग सोदा ले होना बंदा दा पैकेट तो मैं भी लंदा पर अड़िए तरीक मैं नहीं पढ़ी रुक तू मैं ले उन्दी तिस पैकेटे
0: दिख तू मियो मिये
1: मिये दो बंदा दे पैकेट में लंदे हे ये तो अज राती खत्म हो जाना है दिख मिये तो मैं क्या बंदा ही खांदी रहेंगी ना पात कने रोटियां ना खा मैं फिंडुए दे पापे भी यही देने फिंडुए भी यही देने तीना दुनियो कब्जी हो यानी फिरी ऊपर इत डॉक्टर नीना पोने मिये बांदे खाने चार टाइम जड़ ये स्यापा मैं तो सोचे कुछ की दो हफ्ते लंगो यंगे ये कितने के बांद खाने मेरे की रात ये चकेसरो मैं मकोड़ू छड़ना नहीं है सह तिस पर हाँ विश्वास कर दे कने से विश्वासघात करदा हने दिखता
0: ओ मिये ते निखरियां पौड़ियां जाजियां जे तेरी रेड खूड है चंपा ए शांति कने केसरोए बनींदा चोड़ मच चुकी से समाने बन तू चल कने दलाज कर दियां चल
1: दिखता मिये की बोला दी ही चंपा मैं भी जाना सौदा लेना सह भी कुछ की गई होंगी तो तीसा भी

वो आज तो जाना ही पौना है मकोड़ू दुकान ही जाना पौना है। सारा सौदा खत्म है घरें ता तू ते मंगी मुंगी के ले आ ना थोड़ा जिया थोड़ा शांति ते ले आ थोड़ा केसर ते सारा समान खत्म हो गया। इंजा तो मैं मकोड़ू दुकान दिखना नहीं चाहती पर क्या करना आज मजबूरी है लेना पौना है सौदा थोड़ा जिया। चलती मैं बैठे ही है बाहर। मकोड़ू मकोड़ू पाई ओ जी मकोड़ू पाई ए काली काली गोभी हो रही हो ये थोड़ी थोड़ी खराब लगी होना ये किया लगाई हो तू। हाँ मकोड़ू पाई सुमे की नी ए गोभी ए ए और सी दुकान ते तेई छैल चिटी चिटी गोभी होंगी जलगी जा ही नहीं होना आज मौसम इतना खराब है इतनी तेई लैना पौनी है गोभी। मकोड़ू पाई सुनता ही नहीं है सुनता ही नहीं सच्ची शांति सच्ची गलांदी ए दिख केडी अकड़ा ने हिला दा जरा जरा हिलया जरा करे शांति दी ता ही नहीं बनती इसने गलांदा नहीं है ढंगे ने जरा भी करना क्या। मकोड़ू पाई ए काली काली गोपी जड़ी होई रही हो ए किया लगाई है तू। हाँ सुम्या भी आया जो कि नहीं। मकोड़ू पाई हाँ क्या बोलिया अच्छा 50 रुपये किलो ओ पाई क्या बोला दे तू। हाँ और सीधे दुकान ना था 40 रुपये किलो है भी चिटी चिटी गोभी क्या है तू। हाँ 50 रुपये किलो लाइयो। मकोड़ू पाई ए आलू ए जड़े दो दो आखी निकली आई नहीं हो ए आलू किए लगाए तू। हाँ इं तो मैं लैने नहीं है ना शांति के केसरों दई आदि मिंजो ना आलू पर क्या करना परौने लगे घर आना ना ए आलू मटर गोभी बनानी ही मैं ता करके आई ही लैना और सैरी आले आलू भी मुकी रहे हो ना तू। हाँ एक धड़कने रखे आलू है मकोड़ू पाई दो दो आखी निकली इस आलू दिखा भला ये नक भी

0: लगे निकलना दसना एक इं किलो न मकोड़ू भाई ये क्या तू सारे ने समझाई आ दे ये तो मैं समझी आंदी ना बाकी दे लोग कियां समझदे होंगे क्या गलाया ये भी पंजा पंजा रुपये किलो
1: केसरो ओ दिख मिये चंपा तो जाई बड़ी दुकाना
2: तू है
1: ओ तो है खड़ोती हो इन्ना सारा समान ले लेना है इसे भी पछताना पौना है जानदियां मिये इसे रोक दिया कि मत ले समान ने
2: रोक दिया इसे तू खरीदना रह इसे कितना के खरीद दी है खुरकत हट है जरा के रही सदी भी बड़ी मोलना जानदी ना जरा के मकौड़ी दुकाना का स्वाद लेना दे सही खर्चना दे सही दो पैसे तू
1: ओ मिये पता नहीं क्या क्या खरीदी लेना इन्ना वैसे दो चार चीजें तो ज्यादा तेरे ना खरीदनिया नहीं मांग मांग ही होंगी सही पर दिख मिये इस मकोड़ुए की शकल किया चौड़ा हुई ने बैठा ए सोचता कराए दे लोगों ने तो पता ही नहीं है लगता
2: फुल कॉन्फिडेंस शकला दिख तू इस दिया ये साढ़े समाने भी बड़े भरी कॉन्फिडेंस ने बेचता है पर ये तो गलती साड़ी है ना पढ़े लिखे हाँ फिर इसलिए दौड़ दे
1: पर ग्राएं चीकी दुकान हुए तो करना क्या इसका मतलब कि समान अज दिखी के लेना चाहिए कने अगर लड़ी पौगा ना अज बर्तन कट करेंगा ना तो करना दे
2: मैं तो गलांदी मिये शांति फिंडुए दे पापे ते दुकान खलाई ले तू छुट्टी करा इस दी
1: आईडिया तो तेरा ठीक है ना ये मैं पहले भी सोचा हा फिंडुए पापे करे हड़ी दुकान तिथु भी मंजा ही बहना पोना फिंडुए दे पापा जाना कने तेरा दा ऑफिस जाना ए नहीं बेच सकती दुकाना नी बनगी गप ता मैं कने तू ही खोली लेंगी हां पर चंपा उना दे जरा

0: मियन जर के रोया तू इसे बिछेड़े किनारे त्रीड़े मिये केसरो हमी ये खरीदना नहीं आई ए ताना ही है इस सौदे हाँ खरीदना मुंडी सदा खरीदना सा
1: ताना ही है तू हाँ सौदे मैं तो मिये ऊन खरीद दिया देख गोभी आलू धूपे की बत्ती भी लई मैं एक धूप जोत भी करनी होंगी ना संजा प्यागा तो धूपे की बत्ती भी लई कहने तू क्या बोले टाणा आई हो
0: चुप कर मी केसो जरा के तीड़े सह बछाड़े पस है इन्ना सारा ला पाई देना ताए आ जरा निश्चय ने सुन
1: तायो कही आऊ मैं
0: चुप कर गी मकोड़ू तो पता नहीं सुमना नहीं सुमना टोने बाबे अल जाए के तेरी आवाज पूजी आनी है
1: ओया क्या मिंज दसा तो सही
0: ओना क्या मकोड़ू ते समान लेंदिया मैं प्यागा कने ए ऊनी लेके आई थी सारा समान एक्सपायर निकलिया बिस्कुट से सड़े दे मुस्को दी मी बंद ताज राती मुकने आले न
1: बंद कने मुकने आले न से किया
0: डेट तिस्ती मुकी आनी आज कितने के खाने सांजो बेई के भी खाना पौने जाए के पर पहले इस कम में निपटा दिए न केसरो दस अड़िए सही क्या क्या होया मैं एक टुकड़ा बंदे का खाई लेंदी है
1: तू एक टुकड़ा का ही खा दी मैं सांजो बंडी दे बंडी के खान दिया न
2: लीजी ना तो हाँ चार ते आड़े मरना तो हाँ तोड़ी दे समान ने खाई करिया मरिया था मिंजो मत दिनिया पर
1: ना ना तीजा भी देना संजा वो ना है एक्सपायर बोल दी है शांति संजा कन मिये मैं भी तो सौदा खरीदिया ऊन ही तो खरीदिया मिये मैं तू हाँ फोन ही करी दी है मिंजो कि दे दे समान है दी दुकाना मैं नहीं जानती
0: उमी पढ़ तू डेट पढ़ ले आ क्या ते
1: ए दिख मिये ए ले आ
0: तू पे दी बत्ती दस ला
1: हाँ
0: ए तो चल खरी भी है और के लिया ए तेले द बोतलू
1: आहो ये भी ले आ मिये दिख ए भी ले आ
0: ठहर यहाँ ए इसी डेट तो चार साल पहले मुकी हो इस तक तुड़का लाना था छी छी छी मी केसर देखी से मुकोड़ हुए मेरा तो मन करा मैं गोली मारी हूँ ऐसी हो
1: ओहो मी ए दे छोटी छोटी लिखी हो दिखता एक्सपायरी डेटा था इतना का तो पढ़ोंदा भी नहीं मी ए क्या करना है क्या बोल दे मी ए तीस जो लेंस मैग्नीफाइंग लेंस मी ए तीस ने पढ़ना पौनी एक्सपायरी डेट तो सुझा दी नहीं है किन्या दिखनी है शांति ये दिख कपड़े तोड़ने वाला पाउडर लिया मैं ये
0: पाउडर ना हाँ ए पाउडर केसरो भी लंदिया एक्सपायर है भी
1: ये भी एक्सपायर है ता क्यों ही मी कपड़े तो ही लेंगे कपड़े तो त्यों ही आने ना चाक बनगा कि नहीं बनगा
0: मी एक्सपायर मतलब एक्सपायर खत्म है ये इस तक ता चाक निकलना मर है मतलब ए इस ते चिक की निकलनी
1: है चिक की निकल गई कपड़े साफ ही नहीं होंगे हाय मेहनत बर्बाद जानी मतलब चल ये समान सारा ये मुकोड़ू दे मुंडे मार के आनी है ना मेरा तो पहले गौ नहीं करा था कि जाई नहीं इसकी दुकान ते कुछ लियाऊं मैं मिये ये तो मजबूरी थी मजबूरी मेरी मिये नहीं तो मैं तो जी स्टोर जान दी हाँ
0: तो बड़े बड़े जी स्टोर ते उतरी के तू आज ता है कहे बड़ी वही अगे इसकी दुकान चुड़ दी पता नहीं अंदर अंदर कितना समान खराब होना है मेरी भी मत मारी वही जड़ी प्याग है चलिए इसी हाल बंदा लेना
1: ठीक बोल रही मी मैं भी कदी नहीं जाती मैं पैर नहीं रखना इदी दुकान अज ते बाद मैं ते सोची ले मैं कसम खाई लेंदी ने आज
0: समान ना लेने ते इस दा क्या होना इस दा ते बाद दे होना घाटा क्या होना इसी सबक सिखाना पोना है चल तू चल
1: केसरो तू कयो चुप बैठी हो ते नहीं टाणा इदा समान तिजो के खरा समान दिते ही नहीं
2: मैं के नहीं टाणा और के मैं करे ले करिए जाना है कि दिया गल्ला कर दी तू चंपा मिये मिंजो ता लगा था मेरे पैसे ना खू खाते च चली ये मुंड फूके समकोड़ुए दा पर मैं ता गलांदी चंपा ओ है ताहा ने खरा आहां भी बड़ियां चेंट बन दिया आहां सोच दिया पूरे ग्राहें च आहां तीन निया न पढ़ियां लिखियां कने दिखे ले मकोड़ू मैं दीता ना हंजो धोखा
1: हाँ बन दी ता तू भी बड़ी चेंट है तू ता मैं ते पहले धोखा खाई बैठी मैं तो ये सारे ते लास्ट बिच गई मैं तो वैसे जानती नहीं दी दुकान ना मैं तो इस शक्ल नहीं दिख दी इस दी दुकान ना दी पर क्या करिए ग्राएं दी गल है ना जाना पौंदा केसरो क्या करिए इस समाने दा बरती लिए
2: तेरा दिमाग है खराब होया जे तू बरतना पाई तो तू बरती ले कर मिंजो दिखिया गलांदी मेरे घर अगे आने सियाने दे दिया सड़िया समान तीन खुमाना मिये और के ही पुठा कम तीन करी कमाना कने मिये जे दे दे एक्सपायरी समान ना खुआंगे तो आहां भी मिये हॉस्पिटल दे चक्कर लांदे रहेंगे तिजू पता है ये एक्सपायरी समान खाई करिया फूड पॉइजनिंग हो जांदी। उन तिजू से भी समझाना पोना ना कि ए बड़ा क्या है।
1: अड़िए मैं तो दे समान ले आई नहीं है, मैं तो ये कपड़े धोने वाला पाउडर ही ले आ और नी उगल के कपड़े तो ना सही क्या करना, आगे तो नी जांगे दी दुकान ना और क्या करी सकदे।
2: तू तो पाउडर ही ले आऊंगा मैं ये, पर आहा तो बड़ा कुछ ले रखिया ना, एड्डा चोला भरी रखिया है। पर जल भी दुकान ना जाना ना चंपा, गौर न सुनी ले, कोई भी चीज अहां खरीदा दे तो अहां मुल्ला जी बनाना बैठी रहनी है कि 50 घटा 100 घटा, तो एक नज़र अहां जो जड़ी एक्सपायरी डेट होंदी ना तिसा पर भी मारना चाहिदी, ता तो समझिए कि जनासा समझदार न।
1: जनासा होनी है तो समझदार ही न मिए, पर क्या करना, ये जे एक्सपायरी डेट लिखी होंदी ना मिए, कितनी छोटी छोटी होंदी लिखी हो, जल ये टोलना ही पौंदी।
2: ये तुम ही ता बचियो है एक्सपायरी ब्रेड खाने ते, मर्दी मर्दी है बचियो तू, पुलिये एड्डा वड्डा सब कहा तिजो मिलिया, समान ता हम कोड़ुए टाई के रखना है, कने तिस्ते हां पूरा मुआवजा लेना है।
1: हां चल शांति भी तेई गला दी, चल चल चल शांति चल।

0: किसान साथियों, मौजां ग्राइंदियां कार्यक्रम इत्थी संपन्न होआ करदा है। संपन्न करने ते पहले तुहानूं दसीए, इस कार्यक्रम च सांझो तकनीकी सहयोग दित्ता सुरेंद्र कपूर ने, कने इस कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता हैं
1: जितेंद्र पाल सिंह है ना
0: जी।
1: कने हुण हांजी दुनिया दी अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आपने सुना मौज जागर इंडिया कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है समाचार, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India will host the BRICS foreign ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest.
5: On the 14th and 15th of this month, the BRICS foreign ministers meeting is being held, which we are chairing. The Prime Minister's first stop will be the United Arab Emirates. Apart from that, the other four countries to be visited are Norway, Sweden, Italy and Netherlands.
4: Speaking about India's relations with Nepal, Mr. Jaiswal said, both sides are now working closely to further deepen the partnership. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security. He added that there will also be talks on increasing trade and investment between the two countries. On Mr. Modi's visit to Norway, Sweden, Italy and the Netherlands, Mr. Jaiswal said that these countries are also the centres for innovation and clean energy technologies, and discussions on these matters will be held during the Prime Minister's visit. Replying to question on reports regarding China's support to Pakistan during Operation Sindoor, Mr. Jaiswal said that these reports corroborate what was known earlier. He said that Operation Sindoor was a precise, targeted and calibrated response to the terrorist attacks in Pahalgam aimed at destroying state-sponsored terrorist infrastructure operating out of Pakistan and at its behest. Mr. Jaiswal said that as per India's neighbourhood first policy, New Delhi continues to support these countries with energy supplies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that India is capable of strengthening itself against all obstacles, be it economic, technological or geopolitical. Speaking at the CII Annual Business Summit 2026 on next-gen labour reforms, driving industry growth and job creation in New Delhi, he said, the country currently has sufficient foreign exchange reserves to cover nearly 11 months of imports, placing the country in a very strong position globally. Speaking at the summit, Education Minister Dharmendra Pradhan stressed the need for a skill-based education system and said a strong credit system must be developed under the national education policy. Meanwhile, Niti Aayog member Rajiv Gauba said, in order to establish the structural foundation for India's future economy, the government has enhanced our connectivity via PM Gati Shakti, broadened highways and developed the Vande Bharat rail network. He added that the country must seize this moment to ensure India remains on this trajectory of bright and resilient growth. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The government today said those who are involved in the alleged NEET UG paper leak incident will be nabbed and jailed so that the future of students are not adversely impacted. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said that the agency will refund the amount of NEET UG examination fees to students. He said NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts. Department of School Education and Literacy Secretary Sanjay Kumar has said that NCERT and CBSE have jointly introduced a new curriculum on computational thinking and artificial intelligence for students from class 3 to 8. Speaking on the initiative, Mr. Kumar said the curriculum has already been rolled out. And in IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई भैन जो सारिया श्रोतिया जो किसान मित्र दी टियाले ते दो हथ जोड़ी के राम राम कहना जिन्हें किसान साथियों जिन्हें श्रोतिया अपने रेडी सैट होनी ऑन किते दिन दस दईए कि टियाले पर अज मेरे सोगी है लंबरदार जी।
2: बिल्कुल सारे किसान बागवान भाई भैन जो लंबरदार की तरफ से भी राम राम कहना आशा कर दे कि सारे किसान साथी जड़े हैं सब सुख समृद्धि कहने होंगे
1: जी। हाँ जी कहना लंबरदार जी जिन्हें कार्यक्रम किसान वाणी शुरू होंदा तो अहां दे श्रोता अहां दे किसान बागवान साथी अपने सोगी किसान वाणी दी डायरी कन्नै किसान वाणी दा पेन भी जेड़ा सा आपू सोगी रखे लैंदे ने ना कि जिहड़ियां जानकारियां तिन्हां जो आकाशवाणी दे माध्यम ते मिलदियां ने सै उन्हां जो सोगी सोगी तिन्हां जो सै नोट भी करदे ने कन्नै बाद दे विच तिन्हां विच जेड़ा सा अमल भी करदे ने।
2: बिल्कुल कन्नै देखो किसान मित्र जी इस वरी दा हां जिहड़ी कणका दी गाई थी ना इस विच मौसम ने जेड़ा सा काफी बिघन जेड़ा सा हां बोलिए पाया लेकिन इस कन्नै कन्नै हां भी बोलना चाहूंगे भी हाड़ा किसान हूँ जड़ा है एक आधुनिक किसान बन चुका है आज मौसम दे हिसाब कन्ने हां काम करा करदे जालू भी हां जो पता लगदा कि भी हां फसल कटाई करनी है गाई करनी है तो हां मौसम दिखी के काम करा करदे है ना जी तो बड़ा अच्छा भी ये हां लगदा कि भी हां जो पहले पता लगी जांदा कि कदिया माहौल है बारिश का मौसम कदिया है कन्ने इस बारी जड़ा मैं खास करके पहले भी तुहानू नगलाए बैठा किसान मित्र जी भी इस बारी जड़ा सा थुक सीम जड़ा सा इकट्ठा कराई दा
1: बिल्कुल
2: है ना तो भी काफी मुश्किल जड़ी साडे किसान साथियों आई कन्ने अच्छा हूँ अजकले जड़ा हाँ खास गल अपने किसान साथियों कन्नै करनी है सह दसा तुम क्या है
1: सह लंबरदार जी ये है कि जी फसल की गल हाँ करा करते हे तो हूँ जड़ा सह हाँ जो अहाँ गल करनी है सह अहाँ करनी है प्राकृतिक खेती के उपर जी लंबरदार जी दिखा अहाँ अपने लोभ लालच ताइया कन्नै थोड़ा ज्यादा उत्पादन लेने ताइया अहाँ अपनी धरती माता पर मते सारे अत्याचार जड़े सह करी ले जितना कि अहाँ का जोर चलिया उतने कि अहाँ छिड़काव कन्नै रसायन जड़े सह जमीन पाए थे है ना।
2: बिल्कुल
1: एक तरफ क्या होया कि उत्पादन तो कुछ हद तक जड़ा सा हाँ जो ज्यादा मिलना लेकिन दुए तरफ अहाँ दिखिए तो उतनी बीमारियां भी अहाँ जो जड़ा सा जकड़ी लिया है ना।
2: बिल्कुल तो ठीक लाया भाई इस कन्नै कन्नै साड़ा वातावरण भी दूषित हुआ करता मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी घटा करती कन्नै मिट्टी भी प्रदूषित हुआ करती जल प्रदूषित हुआ करता कई तरह दीजा जड़िया इस बिच आवा करती हैं।
1: हाँ जी
2: तो हाँ अपने किसान साथियों ने गल करनी है कि आने वाले टाइम में हाँ हौली हौली साढ़े वैज्ञानिक भी आशा करा करते कन्नै आग्रह करा करते साढ़े किसान साथियों ने कि भाई अपनी खेतीबाड़ी जो जितनी जल्दी हो सकता प्राकृतिक तरीके कन्नै करने की कोशिश करा कैंचुआ खाद जैविक खाद जड़ी है कन्नै जियां हां बोलदे ना कई तरह के अजकल कीटनाशक कन्नै जड़े खरपतवार नाशक ने जैविक तरीके कन्नै भी बड़ा करते तिन्हां च अपना रुझान जड़ा सा बधा।
1: हाँ जी दिक्खा कन्नै सरकार भी इस कदम च काफी सहायता अहां दे किसान साथियों की करा करती है जगह जगह दिखा ब्लॉक स्तर पर जड़े सा ATM BTM आत्मा परियोजना वाले अधिकारी अहां दी मदद करन दईयां ब्लॉक स्तर पर बैठे हुए ने कन्नै तिन्हां ते अहां प्राकृतिक खेती कियां करनी है क्या क्या इस घटक जड़े से बनाने हैं अहां पूरा उन्हां ते जड़ा से जानी सकदे हैं इस ते कन्नै हर एक पंचायत स्तर पर भी जड़े से मास्टर ट्रेनर नियुक्त कीते हुए ना।
2: बिल्कुल तो ठीक लगे कि ये प्रशिक्षण अगर तुम लेना चाहते तो अपने कृषि अधिकारी जड़े ब्लॉक स्तर पर बैठे हुए तिन्हां ते तुम संपर्क कर सकते कन्नै तरह तरह जड़ी अहां बोलदे प्रशिक्षण शिविर लगते रहते निशुल्क प्रशिक्षण शिविर जड़े से होंदे रहते हैं इस गलबात के बाद हूँ अपने किसान साथियों अगले चरण की तरफ लेके चल दे।
1: हाँ तो सुनते न एक जड़ा सा सारे मिली के लोकगीत कने लोकगीत के बाद अहां सुननी है एक भेंट वार्ता
2: जी।

0: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी च अज मिंजो कन्ने एक उन्नत किसान जुड़ा करदे ने इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी। राम राम
0: जी। अपना नाम दसा।
1: मेरा नाम दीप कुमार है।
0: हाँ जी।
1: कने घर छल में।
0: अच्छा।
1: कने ब्लॉक मेरा रात।
0: अच्छा, तो दीप कुमार जी खेतीबाड़ी करदे है ना।
1: हाँ जी करदे।
0: कितनी की जमीन है तुहां वाल खेती करने वाली?
1: खेती करनी हो जी हाँ जो लै 8-10 कनाली होनी है।
0: अच्छा, सारी वाही होंगी?
1: हाँ जी सारी वाही होंगी।
0: क्या क्या बनते? अच्छा
1: कुछ जी सब्जी भी लाते।
0: हाँ हाँ जी।
1: कुछ च अपने खाने जोगा गेहूं।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तो जी जिक्र करते जी अहां दी पिछे जड़ी फसल निकली कणका दी।
1: हाँ जी।
0: कदे की फसल रही?
1: कणका की फसल जी वधिया ही।
0: हाँ जी।
1: कने पहले तो थोड़ी ज्यादा पैदावार हुई बे।
0: अच्छा, तो दीप जी जड़े तुहां दे ए बीज वगैरह होंदे ना, ए कौन बीज बांधे तुहां, अपने या फिर कोई उथे लांदे कुथी?
1: एक बारी लोंदे जी कने 2 साल बीज लैंदे।
0: अच्छा
1: लोग ते।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: हाँ जी। ऐसा मनते भी हैं ना कहीं दू 3 साल बाद जो बीज बदलना चाहिए ना।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा अच्छा जी, जी गल करते हैं जी खाद की, तो खाद कौन दे पाते तुहां खेतर च?
1: खाद जी जो घर की होंगी गोहा वगैरह झाई पाते जी।
0: अच्छा अच्छा दीप जी, जियां जेड़ा तुहां दा इलाका ने रशियालू,
1: हाँ जी
0: इस इलाके च पानी दा क्या साधन है, कियां खेती करदे तुहां सिंचाई?
1: पानी जी बरखा दा ही हुंदा, सुना बरखा ही होवे तां ही खेती ज्यादा हुंदी।
0: अच्छा अच्छा। कुल वगैरह नहीं लगदी है ना?
1: कुल नहीं लगदी।
0: बिजाई वगैरह कियां करदे? ट्रैक्टर वगैरह रखे अपना है?
1: हाँ जी ट्रैक्टर रखे जी।
0: पावर टिलर रखे?
1: पावर टिलर जी।
0: अच्छा, तो जैलू पावर टिलर लिया अनुदान वगैरह मिले कुछ विभाग द्वारा?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा
1: हाँ जी मिले जी।
0: किन्ना अनुदान मिल लिया?
1: ये मिले जी 25,000 रुपया।
0: अच्छा अच्छा, जियां तुहां दस्या कि बरखा भरी तुहां दा जिहड़ा इलाका है निर्भर है, तो तुहां कोई जियां पानी वगैरह दे खड्डे खुड्डे नहीं बनाए जियां टैंक वगैरह?
1: टैंक वगैरह ही बने जी।
0: अच्छा,
1: कने बरसाती दा पानी टैंका थोड़ा बहुत किट्ठा कर लैंदे कने सिंचाई कर लैंदे।
0: अच्छा, दीप जी जियां तुहां दस्या ना कि तुहां ज्यादातर जिहड़े से देसी खादां भरी जिहड़े से खेती तैयार करदे हैं ना, जियां कई कई बार क्या होंदा फसल च कोई जियां कोई रोग लगी जांदा कोई बीमारी भी आई जांदी, तां क्या करदे तुहां?
1: ਇਹ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ।
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ?
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ?
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
0: ਕਿਆ ਕਿਆ ਘਟਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ 'ਚ?
1: ਹਾਂਜੀ ਜੀਵਾਮ੍ਰਿਤ, ਗੰਜੀਵਾਮ੍ਰਿਤ,
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਅਗਨੀਅਸਤਰ, ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
0: ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਨੀਅਸਤਰ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ ਹੈ ਨਾ?
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ?
1: ਇਹ ਜੀ 2014 'ਚ ਜੁੜੇ ਸੀ।
0: ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਥੀ?
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਹੋਈ ਸੀ।
0: ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹ?
1: ਇਹ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰਹੀ।
0: ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ?
1: ਉੱਥੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
0: ਹਾਂ, ਘਰ ਆਪੋ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹ ਆਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
1: ਬਣਾ ਸਕਦੇ
0: ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਾਮ੍ਰਿਤ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਗਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀਓ ਘਰ ਦੇਸੀ ਗਾ?
1: ਹਾਂਜੀ 2 ਜੀ।
0: ਅੱਛਾ, ਸੋਗੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ?
1: ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ।
0: ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਜੀਵਾਮ੍ਰਿਤ ਅਗਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪਾਉਣਾ ਇਸ 'ਚ?
1: ਇਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਗੁੰਤਰ,
0: ਹਾਂ
1: ਗੋਬਰ,
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੜ,
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਣ,
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ,
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਸਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ
0: ਹੱਡੀਆਂ
1: ਦੀ ਤਿੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ।
0: ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਛਿੜਕਾਅ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ?
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
0: ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਮਿੱਟੀ,
1: ਸੰਜੀਵ ਮਿੱਟੀ
0: ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਘੋਲ ਕਿਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ?
1: ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
0: ਹਾਂ,
1: ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, 5-6 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
0: ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਹ ਸਾਰਾ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾਈਤਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ?
1: ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਈ ਤਾਂ ਘੋਲੀ ਤਾ ਜੀ।
0: ਹਾਂ,
1: ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਜ ਪਿਆਗ ਲਾਈ ਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਜੀ ਘੜੀਆ ਦੀ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਤੀਆਂ ਸਿੰਜ ਪਿਆਗ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜੀ।
0: ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ
1: ਸਿੱਧਾ
0: ਸਿੱਧਾ ਘੜੀਏ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ
1: ਜੀ, ਘੜੀਏ ਦੇ ਸੱਚ।
0: ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ ਜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿਗ ਅਸਤਰ ਕਾ ਨੀਮ ਅਸਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਗੀ ਜੀਆਂ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ?
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ।
0: ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ?
1: ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹਨ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ,
1: ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ देसी जरा बनानी है कहना जी जरा सब्जी है कुछ भी चीज़ है
0: हाँ जी
1: जिन्ना आपू तैयार होना बिच
0: हाँ
1: कने जरा तो अपने पाइते
0: हाँ जी
1: इस आपू जरा पौधे ताकत आ जाती कने जरा इस फल हों इस भी ताकत हों।
0: अच्छा तो जी जरा अनाज तुम जी जितना भी उगाते हैं सोगी जी तुम प्राकृतिक खेती करते हैं तो दिखा जी प्राकृतिक खेती करने ताइया जी थोड़ी जड़ी सह इस जी लागत जी अहती घट होंगी है लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा होंगी तो जलू अहाँ ये उत्पादन मान लिया कि अहाँ कुछ बेचना बाजार में या कुछ भी तो जो सिओ के भाव मिली पाते क्या
1: दिखा जी चल बाजार जाना सब्जी लेके आए
0: हाँ
1: तो सह तो भाव नहीं मिलते हाँ जी
0: हाँ
1: पर ये हाँ जी संतुष्टि होंगी भाई अहाँ खरा खा दे कने खरा शुद्ध और भी खुवा दे।
0: बिल्कुल दिखा ये दिखा बड़ी अच्छी गल तो हाँ जी गलाई है कि आपू जिन्हें अहाँ अपना जरा जो उत्पाद है समान बेचना है तो इन्हें बेचारे क्या पता कि किए तैयार की है ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: कई बार क्या होंगे कि इन्हें कहना ठगी भी हो जाती कि इन बोलते कि इले देसी चीजा देसी सब्जी है देसी सब्जी है कहना होवे भावें सह अंग्रेजी कहना उससे पता नहीं कितना कितना जहर जहर जरा पाया होना है ना।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी
0: तुम एक बढ़िया अच्छी जी सोच ले कि जो चल रहे हो ना कि आपू भी जरा शुद्ध खा कने बिना कुछ लोभ लालच दे कि चलो अगर भा ज्यादा नहीं मिलना करता तो चलो कुछ जरा एक अच्छा तो हाँ बेचा दे ना।
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी अच्छा खवान तो अपना
0: हाँ
1: भी स्वास्थ्य अच्छा रहना कहना दूसरे का भी अच्छा रहना।
0: बिल्कुल
1: हाँ जी
0: बिल्कुल हाँ जी तो तुम जो कौन बाजार लगता ने घर से विकी जाता समान।
1: घरें बेची लेंगे कहीं बाजार भी जाते जी गगड़ बाजार सोगी ने। हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: कहना देखा बाजार में तो ऐसा होंगे ही है कि हमेशा गाहक दिखता कि जी देसी चीज़ दिसी कुदू मिलना है ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: भले ही सह अगर तिना जो विश्वास हो गया ना कि ये वाकई जो सह देसी तो सह दो पैसे ज्यादा खर्च करने भी जो सह डरते नहीं ना।
1: तैयार रहते जी गाहक जी तो हाँ कुछ सड़का कंजारे टोकरिया लेके बह जाएंगे
0: हाँ
1: देसी देसी सब्जी है
0: हाँ
1: तो सह तो थोड़ी सब्जी तौली बिक जानी।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: कने कई बार तो दिखा ऐसा भी होंगे कि गाहक जी दू चो जगह देना पता कर लिया ना जी अगर हाँ भिंडी बेचनी है तो अगर कुन की बोली था कि अहाँ वाल भिंडी मन लिया 50 रुपये किलो है कहना तिना परले बाद अगर कुनी हक पाई थी कि भरा जड़ी सह 30 रुपये किलो है तो गाहक के भरा चली जाना तिना ये नहीं दिखना कि इस फर्क क्या
1: हाँ जी
0: वजह क्या है ना।
1: हाँ जी क्वालिटी ज़्यादा फर्क नहीं दिखाना देना
0: हाँ
1: सस्ती दिखनी है
0: सस्ती दिखनी चाहे कहना उल्टा भी नहीं सह बीमारी जड़ा
1: बीमारियाँ घर।
0: हाँ दीप जी जियाँ तो हाँ दसिया कि तुम प्राकृतिक खेती की तुम सिखलाई जी सह ले है शुरू शुरू जल तुम ये शुरू किया हा काम प्राकृतिक खेती का तो तुम जो ऐसा लग्या कि उत्पादन कुछ घट होया कि बराबर ही होया।
1: जी हुण जल शुरू शुरू कीता तो थोड़ा घट घट होंदा गया
0: हाँ
1: इं दू खाल त्रीह बाद फिर हौला बढ़ता गया।
0: हाँ अच्छा जी तुम इस प्राकृतिक खेती की सोगी कोई और भी ट्रेनिंग भी लीए कुछ ऐसी जी कई और भी ट्रेनिंग चलदियाँ।
1: हाँ जी हाँ जी बड़िया हाँ जरा आयुर्वेदिक जरा जसूर छाछ ट्रेनिंग हुई ही थी।
0: जसूर जाछ
1: हाँ जी
0: अच्छा औषधीय पौधे
1: औषधीय पौधे की
0: हाँ जी
1: सभी लियो जी।
0: हाँ जी
1: टीच हाँ जो ये जानकारी है भाई कौन चीजा हाँ जी वास्ती खड़िया ने।
0: हाँ जी तो दिखा जलू अहाँ सीखी के आते हैं ना तो अहाँ दिखा अपने ग्राएं आए कि एक नया करने की जी कोशिश करते हैं ना कि
1: हाँ
0: अहाँ
1: जी
0: कुछ
1: हाँ जी
0: सीखी के आए हैं अहाँ के अखे बखियाने भी जरा सीखने जरा सह मिलता है ना।
1: हाँ जी
0: दीप जी जियाँ इस सोगी और तो हाँ अपनी जमीन में कोई जी फलदार पौधे वगैरह भी लगाए कुछ।
1: हाँ जी हाँ जी दो तीन सेबां दे पौधे हैं जी
0: हाँ जी
1: दो तीन तो चमरख लाए।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: अच्छा थोड़े लगाए
1: हाँ जी
0: भी
1: थोड़े थोड़े लाए जी।
0: अच्छा
1: हाँ जी गांस हूँ सोचा पे गांस थोड़े थोड़े बधाइए।
0: अच्छा तो जी दो गाय रखी हैं जी गाय हूँ जी गल करते हैं जी पहले शुरू से भी हाँ गल की ही दुध भी देनी होनी है देसी गाय है ना।
1: हाँ जी दुध भी देनी है पर थोड़ा देनी है जी।
0: अच्छा दोनों देनी है
1: हाँ जी दो ही
0: किन्ना किन्ना दूध देनी है।
1: ये देनी है 2-3 किलो जी।
0: अच्छा चलो देखा अपने घर का जरा सा 2-3 किलो दुध भी जरा सा बड़ा भारी है
1: हाँ
0: ना
1: जी हाँ जी हाँ जी
0: कहना देखा देसी गाय के दुध तो जी से मांग बड़ी भारी
1: मांग
0: है
1: बड़ी फरी है।
0: घ्यो वगैरह भी जोड़ते होने चाह छोड़ते होने।
1: हाँ जी घ्यो भी जोड़ लेंगे चाह भी छोड़ लेंगे।
0: अच्छा
1: हाँ जी दही भी जोड़ लेंगे।
0: तो जी देसी गाय का घ्यो लेना होता क्या अजकल क्या भाव मिली जाता।
1: देसी गाय का घ्यो जी 1200 रुपया किलो है।
0: अच्छा हाँ देखा भी एक ना ही जुड़िया कि देसी है ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: कन्नै दिक्खा गाय दे कि हो जाए बड़े भारी जड़े से आयुर्वेदिक जड़े से गुण है ना जी मालिश करने वास्ते है या कुछ होर है
1: हाँ
0: ना।
1: जी हाँ जी
0: अच्छा दीप जी अहाँ दी जड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है ना उस युवा पीढ़ी जो तुहां क्या सनेहा देना चाहेंगे तुहां।
1: हाँ तो ही बोलते जी काम करने हो ता बड़ा कुछ है
0: हाँ जी
1: काम करा छोटे पैमाने पर करा तो हाँ
0: हाँ
1: हल्का हल्का है
0: हाँ जी
1: ठीक है जी तो हाँ अपनी खेती बाड़ी है तो भी अपने जरा रोजगार ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਖਰਚਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ।
1: ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਨੇੜਾ ਨਾ,
0: ਹਾਂਜੀ,
1: ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਜਾਈ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਛੀ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ
0: ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ ਸਕਦੇ। ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਆਹਾਂ ਕਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
2: ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਅਪਣਾਂਗੇ,
0: ਫਿਰ
2: ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਉੱਨਤ ਬਣਾਂਗੇ
0: ਜੀ।
2: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਾਂਗੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਲਾਈ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 8-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਪਿਆਜ਼ 18-22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਟਮਾਟਰ 12-16 ਰੁਪਏ, ਲਹਸੁਨ 100-120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਕਨੇ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 50-60 ਰੁਪਏ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 25-30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਕਨੇ ਟੀਂਡਾ ਰਿਹਾ 20-25 ਰੁਪਏ। ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਲਾਂ 'ਚ ਸੰਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 50-60 ਰੁਪਏ, ਪਪੀਤਾ 35-40 ਰੁਪਏ, ਮੌਸੰਮੀ 70-80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਅਮਰੂਦ 70-80 ਰੁਪਏ, ਕਨੇ ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 40-50 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਸੇਬ 110-140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ।
0: ਹਾਂਜੀ,
2: ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਥੇ ਕਾਂਗੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੰਝਾ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਰੌਣਕਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
0: ਜੀ। ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ
2: ਜੀ।

0: भाई किसान मित्र जी संजय ये बेला प्यारा दिया लोक गीत साढ़े किसान साथियों पसंद आया होना।
1: हाँ जी
0: इस लोक गीत के बाद आसा अगर संजय की गल करिए ना
1: जी
0: भाई किसान साथियों हाड़ी जड़ी कणका की फसल है ना सह लगभग लगभग साढ़े किसान साथियों घर पजाई ली है।
1: हाँ।
0: लेकिन गल ही है भाई इसे बधिया करके सुकाई बनाई के जड़ी सह पेड़ू च पाने ते पहले
1: हाँ।
0: मैं तो यह भी बोलगा जी तुम गल करा करते थे ना भी जो हाड़े किसान आए थे
1: हाँ।
0: उन्नत किसान है ना
1: हाँ जी
0: भी ये प्रकृतिक तरीके अपनी इसकी देखभाल करा करते
1: हाँ।
0: तीन सांजो जड़ा है सह अपनी जी कणक है इसी पाने ते पहले जियां सुका बना गांधला है
1: ना
0: अपने फसल कीड़ूए दूर रखी सकते
1: हाँ देखा हाँ बजुर्ग पहले कुछ दवाइया वगैरह होनी ही है
0: जी बिलकुल
1: इन्ह चीजें जरा करके अपने अनाज जो जरा बचाते हे कई बार जी कोई पत्ते वगैरह अगर पीण भी आते वेले मिली
0: उदाहरण देना चाहगा भी हाड़े पड़ोसी वाली मशीन ना
1: हाँ।
0: से रुलदू राम आए अपने पीने लेके
1: हाँ।
0: जालू जे पीण पाई ता उड़िए
1: हाँ।
0: लास्ट च है पूड़ी बची रही
1: हाँ।
0: दिखा तुहां भाई कितना दिमागे च ये हो जाता भाई अगर पुड़िया कुछ थोड़ा बहुत भी असर अगर इस कुछ आटे च हो गया तो क्या हालत हो सकती है। गल बड़ी एहतियात जी रसायनिक दवाई ने रखना पौंदी हाड़े जो प्रकृतिक तरीके तिना कन्ने इतना ज्यादा सांजो मतलब फर्क कोई नहीं पौंदा
1: कोई नहीं हाँ जी
0: थोड़ा बहुत चली भी जाए है ना
1: जी
0: तो इन गल्लां जरूर अस ध्यान रखना कि आने वाले टाइम जड़ा है जल्लू भी अहां भंडारित करनी है अपनी फसल तो अच्छे तरीके सुकाई बनाई के करनी है ताकि और दी मुश्किलां या बीमारी कोई फसल च ना लगे।
1: हाँ जी हाँ
0: तो हूँ संजा का बेला भी तुहां किसान मित्र जी समझा करते
1: बिल्कुल हाँ रौनक मेला जड़ा सा लंबरदार जी अहां नी जड़ा सा भुलना क्योंकि देखा अहां दे किसान पूरा दिन थके होंदे
0: थके होंदे अजकल
1: कहना थोड़े जियां गीते थोड़ा सुनी के थोड़े इयां जिसिए बोलते ना चुस्ती फुर्ती आई जांदी है ना
0: थोड़ा अन्ने गल गलाई तुहां तो आवा सुन दे प्यारा दिया लोक गीत
1: जी।

0: इसी कन्ने ही कार्यक्रम दा समय इत्थों ही संपन्न होया। तकनीकी सहयोग आयोजता सुरेंद्र कपूर ने कन्ने प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम दे जितेंद्र पाल सिंह
1: जी
0: उन हंज दोनों दिया अनुमति
1: अच्छा
0: आचा
1: जी
0: जी
1: जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।

अभी आप सुन रहे थे किसानवाणी कार्यक्रम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:45 पर प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार DTS सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध रहेंगे।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन
2: तुरंत?
3: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
2: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें
3: और कर्ज उतना
2: जितनी जरूरत,
3: वो भी जांच कर।
2: हो गया इंतजाम,
3: पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने छोटे सेब उत्पादकों के लिए MIS के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने और चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया बिलों का जल्द भुगतान करने के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिमला में तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान का किया शुभारंभ। समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से निपटने के लिए युवाओं को जागरूक करने पर दिया बल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विधान मंडलों के कार्य संचालन व प्रक्रिया नियमों में समानता लाने में लोकसभा के प्रयास सराहनीय। भाजपा ने नगर निगम चुनावों के लिए जारी किए संकल्प पत्र, कांग्रेस ने सोलन नगर निगम के लिए घोषणा पत्र किया जारी। और भारी बर्फबारी के कारण बंद चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग और मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बहाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं।

वे आज शिमला में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त और सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भी शीघ्र निपटान किया जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी देनदारियों का निपटारा 4 दिनों के भीतर करने और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश परियोजना प्रदेश में आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में प्रभावी व दूरदर्शी पहल सिद्ध होगी। शिमला में आज परियोजना की प्रगति व क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,687 करोड़ की लागत की इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे की पुनर्स्थापना करना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों व बागवानों के लिए मजबूत सुविधाएं और ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि प्राकृतिक आपदाओं के समय उनकी फसल और आजीविका सुरक्षित रह सके। इस बीच मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य के लिए 31 मई तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों को पोषण युक्त भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोकभवन में यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन हिमाचल द्वारा आयोजित तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त व स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इस दौरान यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन हिमाचल के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संगठन द्वारा चलाए जा रहे मिशन यूथ फॉर राइज नो टू ड्रग्स यस टू पैशन की विस्तृत जानकारी दी। इस मिशन के अंतर्गत तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान को सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है। राज्यपाल ने संगठन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए युवाओं में जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और जिम्मेदार समाज के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी व सामूहिक सामाजिक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बीच राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हिमाचल प्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक विवेक पठानिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आज लोकभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने और कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि कार्य संचालन और प्रक्रिया नियम हर विधानसभा की रीढ़ होते हैं और ये नियम सदन के कामकाज को नियंत्रित करने, अनुशासन बनाए रखने व लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करते हैं। कर्नाटक विधानसभा द्वारा मैसूर में आयोजित राज्यों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानमंडलों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों में राष्ट्र स्तर पर समानता लाने के लोकसभा के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि एक समान मॉडल विधायी कामकाज की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकता है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रचलित कार्य संचालन पद्धति व नियमावली का विस्तृत विवरण भी दिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने नगर निगमों सोलन, पालमपुर व धर्मशाला में आगामी 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि सोलन को प्रदेश का सबसे स्वच्छ, सुरक्षित, हरित और स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। उधर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला नगर निगम चुनावों के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला को आधुनिक, सुव्यवस्थित, पर्यावरण अनुकूल और विश्व स्तरीय पर्यटन शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध।

0: उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा तैयार किया गया ये संकल्प पत्र केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि धर्मशाला के भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट है। सुधीर शर्मा ने कहा कि ये संकल्प पत्र शहर की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
1: नगर निगम के सामूहिक विकास की दृष्टि से पार्टी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है, ये संकल्प पत्र पूरे नगर निगम को एक दृष्टि में रखते हुए तैयार किया गया है। शपथ पत्र में मुख्यतः जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नगर निगम धर्मशाला को विकसित करने के लिए मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए विचार रखती है।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार ने नगर निगम पालमपुर के चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र पालमपुर के समग्र विकास का रोड मैप है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी सोलन नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नगर निगम चुनाव प्रभारी व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की उपस्थिति में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सोलन शहर का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की समस्या का जल्द निपटारा किया जाएगा और शहर को शत प्रतिशत सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा।
2: पिछले सवा तीन साल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, सोलन की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि दिक्कत थी, लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए जो है वो अलग अलग वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को ठीक करने के लिए खर्च किया गया है। हमारी कोशिश ये भी है कि हर वार्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए।
0: इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता पूरी तरह त्रस्त है। पालमपुर में आज नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता से झूठे वायदे किए, लेकिन महिलाओं को 1500 रुपए और युवाओं को रोजगार की झूठी गारंटियों ने कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि पूरे प्रदेश विशेषकर पालमपुर में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और हिमाचल की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के साथ चलने का मन बना चुकी है। उन्होंने नगर निकाय चुनावों में भाजपा की जीत का दावा भी किया। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण बंद चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग को लोक निर्माण विभाग ने छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। करीब 14,500 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले इस मार्ग के खुलने से पांगी घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है और वाहनों की आवाजाही आरंभ होने से घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से जुड़ गया है। जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने साच पास मार्ग को रिकॉर्ड समय में बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की सराहना की है। उपायुक्त ने बताया कि इस मार्ग के खुलने से चुनाव संबंधी सामग्री पांगी घाटी तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। उधर मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को भी आधिकारिक रूप से यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के चलते कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रोजेक्ट हिमांक की स्नो क्लियरेंस टीम ने सड़क संपर्क बहाल करने की उपलब्धि हासिल की है। इस मौके पर 38 कोर टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल गौरव बंगारी, ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल तेजस मोरे और कैप्टन साजय कृष्णा भी मौजूद रहे। सीमा सड़क संगठन की टीमों द्वारा बर्फ हटाने का कार्य 16 मार्च से शुरू किया गया था और शून्य से नीचे तापमान व हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार काम करते हुए इस मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने छोटे सेब उत्पादकों के लिए MIS के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने और चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया बिलों का जल्द भुगतान करने के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिमला में तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान का किया शुभारंभ। समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से निपटने के लिए युवाओं को जागरूक करने पर दिया बल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विधानमंडलों के कार्य संचालन व प्रक्रिया नियमों में समानता लाने में लोकसभा के प्रयास सराहनीय। भाजपा ने नगर निगम चुनावों के लिए जारी किए संकल्प पत्र, कांग्रेस ने सोलन नगर निगम के लिए घोषणा पत्र किया जारी और भारी बर्फबारी के कारण बंद चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग और मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
4: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।

0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: जी हाँ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र पर इस वक्त हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस। और आज के सबरस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है फाल्गुनी पाठक की आवाज में गाए इस गीत के साथ। रंग बिरंगे गीत संगीत से सजा हुआ ये गुलदस्ता आप सभी के लिए लेकर आते हैं हम रोजाना इसी वक्त आकाशवाणी धर्मशाला 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोता, इसी के साथ आज विविध संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं और इस वक्त आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ देशभक्ति गीत।

0: श्रोता, इसी के साथ देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है समाचार संध्या। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे News@9। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: के लिए आपको
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।
3: सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। NEET UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। NEET UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जाँच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम

0: एक कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित TV के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को TV के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान TV के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक S कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
4: ICCR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
5: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है।

अब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिमबोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिंह और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में रितुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है पार्श्व गायिका आशा भोसले के बारे में। श्रोताओ आपको बता दें, आशा गणपत राय भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ और ये एक मशहूर प्लेबैक सिंगर रही है और लता मंगेशकर की छोटी बहन और दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री है। आशा भोसले ने अपने फिल्मी करियर में 15,000 से अधिक जो है वो गीत गाए हैं। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और रूसी भाषा में अनेक गीत गाए। आपको बता दें कि आशा भोसले ने अपना पहला गीत 1948 में सावन आया फिल्म चुनरिया के लिए गाया। आशा भोसले की लाइफ से जुड़े हुए कुछ और भी दिलचस्प बातें आप सभी से साझा होगी, उससे पहले सुनेंगे ये गीत।

श्रोता, एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। आपसे बात हो रही है प्लेबैक सिंगर आशा भोसले के बारे में। श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे कि आशा भोसले ने शास्त्रीय संगीत, गजल, पॉप संगीत, यानी कि यूं कहें कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा और एक समान सफलता भी पाई। उन्होंने आर डी बर्मन से विवाह किया। उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो फिल्म फेयर पुरस्कारों में उन्हें 1968 में बनी फिल्म गरीबों की सुनो, 1969 में बनी फिल्म पर्दे में रहने दो यानी कि शिकार फिल्म के लिए, इस गीत के लिए, कारवां के लिए, हरे रामा हरे कृष्णा, नैना और डॉन फिल्म के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अगर बात करें तो उमराव जान और इजाजत फिल्म के लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि 12 अप्रैल वर्ष 2026 को ये सुरीली आवाज़ की मालकिन हमारे बीच से अलविदा लेकर कहीं दूर जाकर बस गई। लेकिन उनकी सुरीली आवाज़ आज भी हम सभी के दिलों में, हम सभी के कानों में यूं ही गूंजती रहेगी। आइए सुनते हैं आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में ये गीत।

श्रोता, इसी गीत के साथ आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं और यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम धाम गीतादि। जी हाँ, ये कार्यक्रम आप अभी से लेकर ठीक 10:30 तक सुनने जा रहे हैं हमारे साथ एकदम लाइव आकाशवाणी धर्मशाला से।

अभी आप सुन रहे थे अच्छा सिंह परमार की आवाज में ये लोकगीत। आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं धाम गीतादि कार्यक्रम।

श्रोता विक्रांत की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का धाम गीतादि कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर हो गए हैं हम आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लता मंगेशकर।

ये आवाज में गाए इस गीत के साथ। इस गीत को हमने लिया है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जी हाँ, किसी के आने की आहट से दिल की धड़कनें जो है ना, वो तेजी से धड़कने लगती है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही प्यारा सा गीत फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से। इस गीत में आवाजें दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

चित्रपट संगीत का आनंद इस वक्त आप ले रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं घर फिल्म से।

कुछ सदाबहार से मीठे नगमे इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए आंधे फिल्म से।

0: श्रोता, इसी गीत के साथ प्यारे प्यारे गीतों का ये सफर यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है समाचार। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का